नमस्कार, FM बैंड 102.7 मेगाहर्ट्ज़ ते आकाशवाणी जलंधर केंद्र दा FM रेनबो चैनल है। अज शक संवत 1947 दे विसाख महीने दी 17 तरीक, तद अनुसार ईस्वी सन 2026 दे मई महीने दी 7 तरीक है। इस वेले सवेर दे 5:58 हो रहे ने ते साडी अज दी सभा हुण शुरू हुंदी है। FM रेनबो अपने सारे स्रोतियों का निघा स्वागत करता है।

0: ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਜਲੰਧਰ, ਤੁਸੀਂ ਟਿਊਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ 102.7 ਤੇ 103.6 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਤੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗਰਮੀ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਗਰਮੀ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿਰਫ ਮੌਸਮ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਵੀ ਗਹਿਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੂ ਯਾਨੀ ਹੀਟ ਵੇਵਸ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਤੇ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਡਾਕਟਰ ਨਿਧੀ ਕੰਸਲ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਚਕਰਮਾ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਮ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਲੀਨਿਕ ਹੈ ਕੰਸਲ ਆਯੁਰਵੇਦਿਕ ਐਂਡ ਪੰਚਕਰਮਾ ਇਨ ਬਰਨਾਲਾ, ਤੇ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਮ ਨੂੰ 18 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਆਲਮੋਸਟ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਤੇ ਮੈਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਲ ਤੇ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਤੇ। ਹੈਲੋ।
1: ਹੈਲੋ
0: ਮੈਮ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਹਮਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੇ ਆਪਕਾ।
1: ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸ਼ਾਹਿਨ ਜੀ।
0: ਤੋ ਮੈਮ, ਜੈਸੇ ਆਜ ਕਲ ਜੋ ਹਮਨੇ ਟੌਪਿਕ ਲਿਆ ਹੈ ਹੀਟ ਵੇਵਸ ਕਾ, ਸਬਸੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਆਪਸੇ ਯਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਆਜ ਕਲ ਜੈਸੇ ਹਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੜ ਰਹਾ ਹੈ, ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੋ ਅਗਰ ਕਿਸੀ ਕੋ ਲੂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜਾਤੀ ਹੈ ਯਾ ਲੂ ਲੱਗ ਜਾਤੀ ਹੈ, ਤੋ ਸਬਸੇ ਪਹਿਲੇ ਬੋਡੀ ਮੇ ਕਿਆ ਚੇਂਜਸ ਆਤੇ ਹੈ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਜ ਪਰ।
1: हाँ, सबसे पहला और शुरुआती लक्षण लू लगने का है चक्कर आना, सिर में भारीपन या बहुत ज्यादा थकान होना, इससे आप गैस लगा सकते हैं कि लू लग गई है।
0: जी
1: हाँ जी
0: जी। तो मैम इंस्टेंट रिएक्शन की तो हमने बात कर ली है, जैसे आपने बताया कि अगर किसी को लू लग जाती है तो उसको चक्कर आने लग जाते हैं, तो इसके अलावा और कौन कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जो हमें पता चलेगा हमारी बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं, कि उससे पता चल जाएगा कि हाँ लू लग गई है या फिर लगने वाली है?
1: हाँ जी हाँ जी। लू मतलब हीट वेव्स यानी गर्म हवाएं हमारे शरीर का तापमान बढ़ाना शुरू करती हैं, जिसकी वजह से बहुत पसीना आता है, पानी की कमी होने लगती है, शरीर में इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस होने लगता है, सिर में भारीपन, सांस फूलना, तेज धड़कन, ऐसी चीजें होती हैं, स्किन डिहाइड्रेशन की वजह से स्किन का ड्राइनेस होना शुरू होता है, कई बार इतना ज्यादा डिहाइड्रेशन हो जाता है कि इंसान बेहोश तक भी हो सकता है। बेहोशी लक्षण इसका काफी जानलेवा लक्षण है, तो उससे पहले ही इसको हम कंट्रोल कर लें तो हम इससे बच सकते हैं।
0: जी मैम, जैसे आपने बताया कि डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसमें पानी पीना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, या फिर अगर कईयों को होता है, आजकल हम देखते हैं कि बहुत रेयर ही लोग पानी पीते हैं, तो ये भी हम इसका कारण मान के चल सकते हैं?
1: हाँ बिल्कुल, अगर आप पहले से अपने बॉडी को पानी से भरपूर रखेंगे, मींस जैसे हमारी पृथ्वी पर 70% पानी है, तो हमारा बॉडी भी 70% पानी से बनी
0: जी।
1: तो यानी ईश्वर ने ऐसा बनाया कि भाई हमारी बॉडी में 70% पानी होना चाहिए, अगर वो रहता है तो लू लगने के चांसेस ऑलमोस्ट निल है। अगर हम पानी नहीं पी रहे हैं, बैलेंस पानी का नहीं बना रहे हैं बॉडी में, तो लू डेफिनेटली लगेगी, क्योंकि वो गर्म हवाएं हमारे शरीर का तापमान बढ़ाती हैं, पसीना ज्यादा आने से ऑलरेडी और पानी कम होता जाता है और बैलेंस खराब होता है, बेहोशी तक के लक्षण भी आते हैं।

0: से पानी पीने वाले इंसान को लू लगने के चांसेस कम हो जाते हैं।
1: जी तो मैम, जैसे कि अगर इतनी गर्मी में अगर हम कोई पर्सन को देखते हैं कि उसको चक्कर आ रहे हैं, उसको लू लग गई है, तो इनिशियल स्टेज में या फिर क्विक हम इंस्टेंट क्या उसको रिलीफ दे सकते हैं? कैसे हम उसको एक सेफ प्लेस पे या समथिंग, ऐसे कौन सी चीजें हैं जो उसके लिए फायदेमंद है उस टाइम?
0: हाँ, सबसे पहला जो आप स्टेप लेंगी जो सेफ और जरूरी है, उसको ठंडी जगह या छाया में ले जाया जाए, पानी पिलाया जाए, पानी के छिट्टे मारे जाए, ये सबसे पहले आप कर सकते हैं। अगर बंदा बेहोश ही हो गया है तो फिर आप उसको होशी में आने का इंतजार ना करें, फिर आप डॉक्टर के पास लेके जाइए।
1: तो ये तो हमने बात कर ली कि अगर किसी पर्सन को लू लग जाती है, अगर पर्सनली तौर पर अगर हम देखें कि कौन से ऐसे स्टेप्स और टिप्स हैं जो हमें गर्मी में जब इतना टेम्परेचर वो हो जाता है तो उसमें हमें फॉलो करने चाहिए लू से बचने के लिए?
0: हाँ, सबसे पहले तो हम बात कर ही चुके हैं कि पानी खूब पीजिए, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मतलब ORS नींबू पानी में नमक चीनी डाल के ले सकते हैं, उससे आपका बैलेंस इलेक्ट्रोलाइट का बना रहेगा तो बॉडी को लू नहीं लगेगी। दूसरा, आप हल्के रंग के कपड़े पहने, क्योंकि गहरे रंग के कपड़े सूरज की गर्मी को ज्यादा सोखते हैं
1: जी,
0: तो जिसकी वजह से तापमान और बढ़ सकता है बॉडी का
1: जी।
0: और पानी खूब, वो हम बता ही चुके हैं, पानी खूब पीजिए। उसके अलावा जल लस्सी पी सकते हैं, नारियल पानी, बेल का शरबत, ये चीजें बदल बदल कर आप रेगुलर अपने आप को हाइड्रेट रखें
1: जी,
0: जिससे लू नहीं लगेगी आपको।
1: जी मैम, लिक्विड की तो बात हो गई है। निधि मैम, अगर हम खाने पीने की बात करें तो आजकल हमें क्या ऐसा है जो खाना पीना चाहिए जिससे हमारी पानी की जो कमी है वो भी दूर हो जाए खाने पीने से?
0: खाने पीने से पानी की कमी नहीं दूर होती है, फलों, हाँ फल खा सकते हैं, फलों में पानी काफी होता है। बाकी खाने पीने वाली ऐसी कोई चीज नहीं है जो हमारे को हाइड्रेट कर दे। फल जरूर ले सकते हैं इसके लिए, नारियल पानी मैंने पहले बताया आपको, आम पन्ना, आम के फल का पन्ना बना सकते हैं, लस्सी, मतलब लिक्विड्स ही पानी की कमी को पूरा करेंगे, कोई खान पान जैसी चीज नहीं। हाँ, जो चीजें आपके शरीर में गर्मी बढ़ाएं वो ना खाएं, जैसे बहुत ज्यादा मिर्च मसाले, चाय, कॉफी, बहुत ज्यादा गर्म खाना जो तासीर में गर्म हो। बॉडी मतलब हीट वेव्स क्या है? गर्म हवाएं जो शरीर का तापमान भी बढ़ा दें, यानी शरीर को अंदर से गर्म कर दें, तो हीट प्रोड्यूस करने वाली चीजों का परहेज रखिए।
1: जी जी निधि मैम, एक क्वेश्चन और मेरे दिमाग में आ रहा है कि जैसे जो लेडीज हैं, जो फीमेल्स हैं, कई बार उनको ऐसे काम पे जाना पड़ता है तो वो मेकअप वगैरह जरूर यूज करती हैं, तो कई बार मैंने सुना है कि डार्क मेकअप करना या डार्क लिपस्टिक वगैरह, कपड़ों की तो हमने बात कर ली है, डार्क मेकअप करने से भी लू लगने का खतरा हो सकता है या कुछ स्किन बर्न या समथिंग?
0: नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं है, कुछ केमिकल, वैसे वो केमिकल्स होते हैं सारे, मैं तो कहूंगी बहुत ज्यादा केमिकल यूज नहीं करना चाहिए चेहरे पे, चाहे सर्दियां हो, लू हो चाहे ना हो, क्योंकि स्किन से अब्सॉर्ब होते हैं केमिकल्स, पर लू से उसका डायरेक्ट कोई लिंक नहीं है कि आप मेकअप लगाएंगे तो लू ज्यादा लग जाएगी, नहीं लगाएंगे तो नहीं लगेगी, ऐसा नहीं है।
1: जी जी निधि मैम,
0: ये इम्यून सिस्टम पे भी डिपेंड करता है, कोई लोग लू को सहन ज्यादा कर भी लेते हैं, कई बिल्कुल ही नहीं कर पाते हैं।
1: जी मैम, निधि मैम, यही क्वेश्चन मैं आपसे पूछने वाली थी अभी कि जिसका इम्यून सिस्टम बहुत वीक होता है क्या उसको भी लू लगने के चांसेस ज्यादा होते हैं?
0: बिल्कुल बिल्कुल, वो तो जैसे हमारे बुजुर्ग छोटे बच्चे नन्हे छोटे, वो नहीं सहन कर पाते हैं लू लगने के, तापमान को सहन नहीं कर पाते हैं, तो उनके उनके अंदर तो डायरेक्ट लक्षण चक्कर से सीधा बेहोशी तक देखने को मिल रहे हैं। तो आप अपने बुजुर्गों का, छोटे बच्चों का ध्यान रखें कि वो दोपहर में बाहर ना निकलें, खूब पानी पिए, क्योंकि वो डिपेंडेंट होते हैं, पानी खुद नहीं लेके पीते हैं, तो उनको बार बार बोलते रहें कि पानी पी लीजिए, ये फल खा लीजिए, नारियल पानी पी लीजिए, जिससे वो सेफ रहें।
1: जी निधि मैम, बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया है, और आपने अभी जिक्र किया है कि दोपहर को बाहर नहीं निकलना चाहिए, तो ऐसे दिन में कौन से ऐसे घंटे होते हैं, कौन से आवर्स ऐसे होते हैं जिसमें हीट वेव के चांसेस जो है मतलब बहुत ज्यादा होते हैं, तो कौन से ऐसे घंटे जिसमें बाहर नहीं निकलना चाहिए?
0: हाँ, ये तो हमारी
1: जरूरी ना हो।
0: हाँ जी हाँ जी, दोपहर 12 से 4 बजे के बीच हमारी पृथ्वी के सीधा ऊपर सूरज होता है, यानी हमारे पृथ्वी पर डायरेक्ट किरणें गिरती हैं, सूरज की तीक्ष्ण किरणें जो पृथ्वी को बहुत गर्म कर देती हैं, उस टाइम पे दिन का तापमान बहुत ज्यादा होता है नॉर्मल आगे पीछे, यानी सुबह और शाम के मुताबिक, तो कोशिश करें इस टाइम 12 से 4 के बीच

0: बिना काम के बाहर ना निकलें। अगर मजबूरी में निकलना भी पड़ रहा है तो हल्के रंग के कपड़े, ढीले कपड़े पहनिए, सिर ढक कर जाइए, पानी की बोतल साथ रखिए, थोड़ा थोड़ा पानी हर वक्त पीते रहें, अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखिए, तो आप लू से बच सकते हैं।
1: जी मैम, तो मैम कोई ऐसी टिप या कुछ इस टॉपिक के रिलेटेड जो आप हमारे लिसनर्स को देना चाहूं?
0: हाँ, अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि लू लगना बहुत साधारण भी हो सकता है और बहुत कठिन परिस्थिति भी हो सकती है, यानी जानलेवा भी हो सकता है। अगर इंसान होश में है तब आप उसको पानी पिलाइए, छींटे मारिए, ठंडी हवा पे ले जाइए, तो वो रिकवर कर जाता है। अगर इंसान बेहोश हो गया तो आप उसको होश में आने का इंतजार ना करें, तुरंत डॉक्टर के पास लेकर जाएं, क्योंकि शायद उसको हमें इंजेक्टेबल इलेक्ट्रोलाइट्स पे डालना होगा।
1: जी,
0: यही टिप रहेगी कि बहुत समझदारी से स्थिति को जानिए और एक्ट कीजिए।
1: जी मैम, एक क्वेश्चन और मेरे दिमाग में आया, जैसे कि अगर किसी पर्सन को लू लग जाए तो, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जिनको प्रॉपर नॉलेज नहीं होती तो वो इस चीज को बहुत लाइटली लेते हैं, अगर ये जो प्रॉब्लम है इनका उनको पता ही ना हो और 1 वीक या 2 वीक ऐसे हो जाए लू लगे हुए हीट वेव्स, तो क्या आने वाले टाइम में ये और ज्यादा खतरनाक हो सकता है बॉडी के लिए, या क्या और इफेक्ट्स वगैरह सिम्टम्स हमें देखने को मिलेंगे इन फ्यूचर में?
0: हाँ जी, जैसे मैंने पहले भी बताया, शुरुआती लक्षण तो चक्कर, सिर भारीपन, ये थकान, हम इसको नॉर्मल भी समझ लेते हैं कि ऐसे हो गया, आराम कर लिया। तो अगर नहीं हम समय पे पकड़ सकेंगे इशू को, तो वो शरीर का तापमान, मतलब पानी की कमी की वजह से शरीर का तापमान इतना बढ़ जाए कि 40% से अबव चला जाए, तो सांस तक लेने में भी इशू आता है
1: जी
0: इंसान को, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है, और बेहोशी तो इसका जानलेवा लक्षण है ही। तो आप बहुत समझदारी से देखना होगा जिसको भी है, अगर चक्कर, भारीपन सर में है, थकान है, तो पानी तो जरूर पिलाइए
1: जी,
0: ORS जरूर दीजिए, इसका कोई नुकसान नहीं है। अगर हम मान ले लू की वजह से ना भी है तो भी नुकसान तो कोई नहीं है, पानी जरूर पीजिए पानी। हाँ
1: जी जी मैम, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है, मुझे लगता है ये टॉपिक जो है ये इम्पोर्टेंट भी था, क्योंकि आजकल हम देख ही रहे हैं गर्मी कितनी हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना कीमती टाइम निकाल कर इस टॉपिक पे हमें इन्फॉर्मेशन दी।
0: बहुत धन्यवाद जी, थैंक यू।

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक NRT कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता ए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोण प्रक्रिया बारे वेरवे सहित जानकारी अते खाली फार्म साडी वैबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च मुहारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वीरवे सेहत बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नथी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता ए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोण प्रक्रिया बारे वेरवे सहज जानकारी अते खाली फार्म साडी वेबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।

सर्दी खांसी लवेरिया हुआ, सर्दी भी नहीं हुई, खांसी भी नहीं हुआ, जुखाम भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, की होया लवेरिया हुआ। इस गाने नूं सुन के नवी चीज तुहानू याद आ ही गई होएगी या फिर चेते कर ली होएगी कि जदों भी हुण तुसी तुहानू कोई पुछेगा ना तुहानू प्यार हो गया, इश्क हो गया, तुसी ऐ नहीं कहना यार मैनू प्यार होया, मैनू इश्क होया, तुसी कहना मैनू कुछ नहीं होया, मैनू की होया जी लवेरिया।

0: एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च मुहारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता ए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोन प्रक्रिया बारे वेरवे सहित जानकारी अते खाली फार्म साडी वेबसाइट newsonair.com जां newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।
1: FM बैन 102.7 MHz ते आकाशवाणी जलंधर दा इह रेनबो चैनल है। ते हुण वेला हो गया है FM न्यूज़ हेडलाइंस दा। बिहार दे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज अपने मंत्री मंडल दा विस्तार करनगे। केरलम दे नवे चुने गए कांग्रेसी विधायक आज तिरुवंतपुरम विच अपने नेता दी चोण करनगे। पश्चिमी बंगाल दे उत्तर 24 परगना जिले विच बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी दे सहयोगी दी गोली मार के हत्या। अज देश पहलगाम दहशतगर्दी हमले दे जवाब च शुरू कीते गए ऑपरेशन सिंदूर दी पहली वरेगंड मना रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर दी वरेगंड मौके भारतीय हथियारबंद सेनावां दी बहादुरी अते कुर्बानी नू नमन कीता। केंद्रीय खेतीबाड़ी अते किसान भलाई मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा सरकार किसानां अते बरामदकारां दीआं सारीआं समस्यावां नू हल करन लई वचनबद्ध है। मौसम विभाग ने अज पंजाब विच कुछ थावां ते तेज हवावां अते गरज चमक बारे येलो अलर्ट जारी कीता। दिल्ली राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 दी मेजबानी करेगा। IPL क्रिकेट विच अज लखनऊ सुपर जॉइंट्स दा मुकाबला लखनऊ विच शामी 7:30 रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर नाल होएगा। ए सन हुण तक दियां FM न्यूज़ हेडलाइंस। इस तों बाद तुसी प्रोग्राम एंजॉय करोगे होम स्वीट होम।

बाहों में चले आओ हमसे सनम क्या परताते, हुन लगता है कि जैसे सामने तो भी ना जवाब आ गया होवे, चेहरे से जरा आंचल जब अपने सरकाया, दुनिया ये पुकार उठी लो चांद निकल आया। दोस्तों प्यार भरे जिहड़े गीत ने ना बहुत ही खूबसूरत ने, तो चलो जी अगला जवाब जिहड़ा है असी देख लैंदे आ मोहम्मद रफी जी की आवाज़ दे विच।

बरसों पुराना ये याराना एक पल में क्यों टूट गया। दोस्तों दोस्ती जिहड़ी इन्हां रिश्तियां दी मिठास नाल बनती है ते जदों यादां बन जावे ना तां फिर होर भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाती है। तां हर लफ्ज़ नूं छू जांदा है ये गीत जिहड़ा कि हुण तुसीं सुनोगे। तां चलिए सुनते हैं इसी एहसास दे नाल इमोशनल रैट्रो मेलोडी बरसों पुराना ये याराना किशोर कुमार जी की आवाज़ के।

हर अरमान के अंदर इतनी फुर्ती जान के अंदर जैसे तीर कमान के अंदर। अरे अरे, अरे

0: कर साहिबा, मिर्जे दी बकी हवावा नु चीर दे होया, पलांच तेरे वीरा तो कोहा दूर निकल जाएगी।
1: जस्ट चिल मिर्जिया, मेरे वीर तो हले घरों ही नहीं निकले, उते कार बैठे एफएम रेनबो सुन रहे ने, ते सुनदे ही रहेंगे।
2: एफएम रेनबो, बाकी सब कुछ भुला दे।

0: आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर के

0: आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। आज का ये कार्यक्रम पुनः प्रसारित किया जा रहा है।
1: श्रोताओं नमस्कार, कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में आप सभी का स्वागत है। आज मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त पूजा शर्मा। बेहतर स्वास्थ्य के लिए यूं तो शरीर के हर अंग का सुचारू रूप से काम करना जरूरी है। बात अगर श्वसन प्रणाली की करें तो ये शरीर का वो हिस्सा है जिससे सांसों का सीधा संबंध है। और आज हम बात करेंगे खास विषय पर, अस्थमा, एलर्जी और इन्फेक्शन से संबंधित परेशानियों की। और इस खास विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर एस के छाबरा, जो हैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट प्लोमोनोलॉजी स्लीप क्रिटिकल केयर प्राइमस हॉस्पिटल न्यू दिल्ली और फॉर्मर डायरेक्टर प्रोफेसर वल्लभ भाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, हमारा सबसे पहला सवाल है कि अस्थमा, एलर्जी और संक्रमण यानी इन्फेक्शन में क्या अंतर है, क्योंकि तीनों कहीं ना कहीं हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम से जुड़े हैं।
2: जी, ये बहुत जरूरी है कि इनका हम अच्छी तरह से समझ लें कि ये तीन जो टर्म्स हैं और इकट्ठी आज क्यों ली गई हैं।
1: जी,
2: वैसे तो तीनों अलग अलग तरह की बीमारियां हैं। जैसे अस्थमा है वो एक सांस की बीमारी है।
1: जी,
2: एलर्जी एक कारण है। जैसे हमारे शरीर में कोई भी कण जैसे हम सांस के जरिए लेते हैं, उससे अगर रिएक्शन हो जाए तो वो जो सिम्टम उत्पन्न होते हैं उसको एलर्जी कहते हैं। और इन्फेक्शन होता है जो कीटाणु होते हैं, जिसको हम बैक्टीरिया या वायरस, वो अगर संक्रमण करता है, हम उसको इनहेल करते हैं तो वो इन्फेक्शन होती है। अब अस्थमा एक ऐसी बीमारी है जो कि सांस कभी उबरता है कभी कम होता है, ये आजीवन रहने वाली बीमारी है। हालांकि इसका बहुत अच्छा उपचार अब हमारे पास है।
1: जी।
2: एलर्जी एक टेंडेंसी होती है, कभी लक्षण हो सकते हैं अगर वातावरण उस तरह का है। अगर वातावरण बिल्कुल साफ है व्यक्ति को कोई भी सिम्टम्स नहीं हो सकते। और इन्फेक्शन एक शॉर्ट टर्म इलनेस है, हफ्ते की, 10 दिन की 15 दिन की, कुछ इन्फेक्शन थोड़ा लंबा चलते हैं। तो ये इनका जो नेचर है तीन टर्म्स का, ये हमने समझ लिया कि ये अलग है। एलर्जी से अस्थमा हो सकता है और अस्थमा के पेशेंट में भी इन्फेक्शन हो सकते हैं। तो ये जुड़े हुए विषय हैं तीन।
1: जी, तो सुना श्रोताओं आपने कि कितने अहम विषय पर आज हम बात कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, इस बेहद खास विषय पर हम आपसे कई महत्वपूर्ण जानकारियां लेंगे। पहले सुन लेते हैं ये गीत।
2: चलिए।

0: श्रोताओं, फिर से आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में। और आज हम इस बेहद खास विषय को लेकर आए हैं आपके सामने, वो है अस्थमा, एलर्जी और इन्फेक्शन से संबंधित। और इस पर हमें बहुत खास जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर एस के छाबरा। डॉक्टर साहब, बात अगर अस्थमा की करें तो अस्थमा क्या है और ये कितने प्रकार का होता है?
1: अस्थमा सांस की बीमारी है और इस बीमारी का शुरुआत
0: जी
1: बचपन में आमतौर पे होती है, लेकिन ये 2 साल 1 साल की उम्र से लेकर 80 साल तक कभी भी शुरुआत हो सकती है। ज्यादातर केस जो है बचपन में या मिडिल एज जिसे हम कहते हैं 20-25 साल तक हो जाती है। तो इसके लक्षण समझ लें, इसमें सांस की तकलीफ होती है, सांस में सीटी जैसी आवाज आती है। ये लक्षण खासकर जब मौसम बदलता है या कहीं धूल या धुआं हो
0: जी,
1: या भागने में या कभी जुकाम हो जाए उसके बाद, यानी कि ये ट्रिगर्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये 12 महीने एक जैसी तकलीफ नहीं होती, कभी ज्यादा होती है कभी कम होती है
0: जी।
1: साथ में खांसी भी होती है, कभी भी बलगम आती है
0: जी।
1: तो ये जो लक्षण है कई साल का पैटर्न बन जाता है कि इस मौसम में तकलीफ ज्यादा होती है, बाकी में कम होते हैं। कुछ मरीज हैं जिनको साल में 1-2 बार तकलीफ होती है, कुछ ऐसे मरीज हैं जिनको की रोज ही तकलीफ होती है। बहुत वाइड इसका स्पेक्ट्रम है और ये बहुत ही कॉमन बीमारी है। बच्चों में हमने ये अनुमान लगाया है अध्ययन करके कि करीब 10% बच्चों को दमे की तकलीफ है, लेकिन हर 10वें बच्चे को।
0: डॉक्टर साहब, इसके कारण क्या होते हैं?
1: कारण एक तो इनहेरिटेंस है कि एलर्जी जिसको है उसमें दमा होने के चांस ज्यादा होते हैं। अब एलर्जी की भी बात कर ले, एलर्जी से जुकाम भी हो सकता है, एलर्जी से स्किन की प्रॉब्लम हो सकती है, एलर्जी से दमा हो सकता है। कुछ मरीज हैं जिनको ये तीनों ही लक्षण साथ साथ होते हैं, या कुछ में पहले जुकाम होता है फिर सांस की तकलीफ होती है, या पहले एलर्जी स्किन की होती है फिर सांस की तकलीफ हो जाती है। तो एलर्जी एक इसका मुख्य कारण है और जो फैमिलीज में चलता है। दूसरा, कोई इन्फेक्शन हो जाए किसी को, जैसे जुकाम हो, कॉमन कोल्ड जिसे हम कहते हैं, उसके बाद दमा उभर सकता है। फिर वातावरण अगर हमारा प्रदूषित है या उसमें कुछ ऐसे कीटाणु हैं जो कि माफिक नहीं आते हैं, उससे भी लक्षण उभर सकते हैं। बहुत सारे केसेस में कारण का पता नहीं होता, तो बिना कारण जाने हुए भी इसका रिकॉग्निशन होता है, डायग्नोसिस होता है, इलाज होता है। और अगर कारण मिलते हैं तो उसमें एक फायदा है कि हम उसको चीज को अवॉइड कर सकते हैं
0: जी। डॉक्टर साहब, हमारे साथ कॉलर है, कॉल लाइन पे ले लेते हैं उनका कॉल। हेलो,
2: ओम शांति
0: जी।
2: पीपी गौतम मेरठ से बोल रहा हूँ
0: जी।
2: मुझे पूछना है कि ब्रोंकल अस्थमा और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में क्या अंतर है और स्लीप एपनिया से इसका क्या रिलेशन है? ओम शांति।
1: अच्छा, आपने जो है सवाल तीन हो गए। दमा के बारे में तो हमने अभी जिक्र कर दिया कि दमा क्या होता है
0: जी।
1: जो ब्रोंकाइटिस है ना, वो जब खांसी और बलगम ये मुख्य लक्षण होते हैं उसे ब्रोंकाइटिस कहते हैं, और जब ये हर साल 2-3 महीने चलता रहता है तो उसे क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस कहते हैं। और ये ज्यादातर बहुत ज्यादा

धूम्रपान करने वाले व्यक्तियों में देखा जाता है, लेकिन जो हमारी महिलाएं हैं खासकर ऐसे इलाकों में जहां पे कि गैस नहीं है और वो अभी भी चूल्हा जलाती हैं, उपले जलाती हैं, लकड़ी जलाते हैं, धुआं जो है वो सांस के जरिए जाता है, तो उनमें ही ब्रोंकाइटिस देखा जाता है। तीसरा स्लीप एपनिया। स्लीप एपनिया एक विशेष बीमारी जो कि मोटापे के साथ जिसका एसोसिएशन है। ये व्यक्ति आमतौर पे 100 किलो 125 150 किलो का वजन होता है, तो ये जब सोते हैं तो इनकी सांस की नली जो बंद हो जाती है। इन व्यक्तियों को खर्राटे बहुत आते हैं और अचानक खर्राटे थोड़े सेकंड के लिए बंद हो जाते हैं, फिर से होते हैं, तो मरीज की नींद है टूटती रहती है। इस तरह वो अच्छी तरह से सोता नहीं है, तो दिन में ही बैठे बैठे सोता जाता है, तो दिन

0: खराटे आना और मोटापा, ये लक्षण है स्लीप एपनिया के।
1: जी डॉक्टर साहब, इसके साथ साथ हमारे पास मैसेजेस भी आ रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज पे, और अमित दिल्ली से लिख रहे हैं कि मुझे जुकाम बहुत रहता है, कुछ ठंडा खाते ही जुकाम हो जाता है, धूल मिट्टी से भी होता है, क्या करूं?
0: हाँ, तो जैसे हम एलर्जी की बात कर रहे थे कि एलर्जी से दमा भी होता है, एलर्जी से स्किन प्रॉब्लम भी होती है और जुकाम भी होता है, तो ये इनके लक्षण जो है एलर्जी के लक्षण लगते हैं। और जहाँ धूल होगा, धुआं होगी या मौसम बदलने में, तो अचानक छींकें आती हैं सबसे पहले, और छींकों के साथ साथ नाक से पानी आने शुरू हो जाता है, तो ये लक्षण बताते हैं कि एलर्जी का केस है। और आज की तिथि में इसका डायग्नोसिस भी हो जाता है और इलाज भी हो जाता है, इसलिए मायूस होने की जरूरत नहीं है, अब निराश ना हो, डॉक्टर को दिखाएं, जरूर इलाज हो पाएगा।
1: डॉक्टर साहब, इसी बीच एक कॉलर जुड़ गए हमारे साथ, कॉल लाइन पे ले लेते हैं उनका कॉल भी। हेलो।
2: हेलो
1: जी।
2: जी सभी को मेरा प्यार भर नमस्कार।
0: नमस्कार
2: मैम, अमित त्यागी बोल रहा हूँ आप यूपी से। मेरा सवाल ये है मैम, जैसे कि दोस्त माँ के मरीज घर पे रहते हैं
1: जी,
2: तो उन्हें घर पे रहकर किन चीजों से बचना चाहिए ताकि उन्हें एलर्जी ना लगे?
0: घर पे जो प्रदूषण की चीजें होती हैं, सबसे महत्वपूर्ण तो उसमें इंडोर कुकिंग है
1: जी।
0: खासकर अगर आपका पाइप्ड गैस या लिक्विड पेट्रोलियम गैस नहीं है, तो जहाँ चूल्हे जलते हैं जिन घरों में, और घर के अंदर ही किचन होती है, वहाँ ये प्रदूषण बहुत ज्यादा, बल्कि जो बाहर का जो हमारा प्रदूषण की मात्रा है ना, उससे कहीं अधिक होता है, तो वो एक धुआं जो है वो एक मुख्य कारण होता है लक्षण को उभारने का। दूसरा, हम कभी कभी ये मच्छर भगाने के लिए वो कॉयल जलाते हैं, उससे भी धुआं उत्पन्न होता है। तीसरा, अगर डस्टिंग होती है, जैसे घर में झाड़ू पोंछा लगता है, अगर ड्राई डस्टिंग होती है तो उसमें धूल काफी उठती है, तो उससे भी दमे के लक्षण उभरते हैं। कुछ मरीजों को एक हाउस डस्ट माइट, एक खास तरह का कीटाणु होता है जो कि हमारे जो मैट्रेस होती है उसके अंदर वो रहता है, खटमल की तरह ही वो होता है, तो उससे भी दमे की जो बीमारी है वो बढ़ने के रिस्क रहते हैं। घर में कॉकरोच, मक्खियां, इनसे भी दमा होने के रिस्क रहते हैं। तो ये कुछ पदार्थ, ये चीजें हैं जो हमारे वातावरण में, जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, जिनको हटा सकते हैं ताकि दमे के लक्षण ना उभरे।
1: जी डॉक्टर साहब, रिया लिख रही है उत्तराखंड से कि इनकी एज 23 साल है, और ये लिखती है कि मुझे कभी कभी ब्रीदिंग नहीं आती बिल्कुल भी, ये ठंड में ज्यादा होता है बट गर्मी में भी होता है, कभी हाइट पे जब ये जाती हैं तब भी ऐसा इनके साथ होता है, और कभी कभी एक नॉस्ट्रिल से सांस आती है और दूसरी से नहीं, और अगर ये बढ़ जाए तो इनको हेडेक होने लगता है, क्या कुछ प्रिकॉशन ये ले सकती हैं?
0: देखिए, सबसे पहले तो ये जरूरी है कि जो इनके लक्षण है वो किस वजह से है उसका एक डायग्नोसिस होना चाहिए, कि दमा है कि नहीं है
1: जी।
0: और दमे के लिए खासकर जिस वक्त हमारे लक्षण चल रहे हो, जिन दिनों में, उन दिनों में सांस की एक प्रक्रिया होती है जिसे लंग फंक्शन टेस्ट कहते हैं
1: जी।
0: वो किया जा सकता है और उसे कंफर्म हो जाता है कि इस व्यक्ति को दमे की तकलीफ है। जब कंफर्म होता है तो उसके बाद हम इलाज प्लान कर लेते हैं। अब इनके लक्षण अगर किसी विशेष मौसम में होते हैं तो उस दौरान इलाज किया जाता है, अगर लक्षण सारे साल ही हैं तो एक अलग तरह से इलाज होगा। तो डायग्नोसिस बहुत जरूरी है, क्योंकि खाली सांस फूलना, सांस के और भी बहुत सारे कारण होते हैं, तो हर सांस बीमारी जो है वो दमे की वजह से नहीं होती, हालांकि ज्यादातर केसेस दमे के होते हैं, तो डायग्नोसिस वो सबसे जरूरी है, और उसके लिए लंग फंक्शन टेस्ट बहुत जरूरी है
1: जी। तो सुना आपने कि डायग्नोसिस जरूरी है और उसके बाद जरूरी है टेस्ट। एक और कॉलर है सर कॉल लाइन पे, ले लेते हैं उनका कॉल। हेलो।
3: हेलो
1: जी नमस्कार।
3: नमस्कार, मोहम्मद काजिम बोल रहा हूँ दिल्ली से।
1: जी सवाल पूछिए आप अपना।
3: डॉक्टर साहब नमस्कार।
0: नमस्कार
3: सर, मेरा पूछना ये है कि जो कार्डियक अस्थमा है ये होता क्या है और इसके लक्षण क्या है, उपचार और इसकी जांच किस तरह की जाए, विस्तार से बताने की कृपा करें।
0: आपने जो शब्द बताया कार्डियक अस्थमा, और अच्छा हुआ कि आपने पूछा, ये कुछ लोगों को कन्फ्यूजन रहती है कि जो दूसरा अभी तक हम बात कर रहे थे वो है ब्रोंकियल एस्थमा, तो वो है सांस की बीमारी। कार्डियक एस्थमा है हार्ट की बीमारी, कि जहाँ हमारा हार्ट की जो पंपिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। आमतौर पर ये देखा जाता है कि जिस व्यक्ति को पहले हार्ट अटैक हो चुका है या उसके कोई वैल्व में कुछ नुक्स है, तो खासकर जब वो लेटता है या रात को सो रहा होता है तो फेफड़ों के अंदर थोड़ा थोड़ा सा पानी इकट्ठा होना शुरू होता है, जिसकी वजह से सांस फूल जाता है। तो कार्डियक एस्थमा हमेशा रात को ही होता है, मरीज 2-2.5 बजे उठ के बैठ जाता है सांस की वजह से, दिन में मरीज काफ़ी ठीक रहता है। जो ब्रोंकियल एस्थमा है उसके लक्षण भी लगभग ऐसे ही होते हैं कि वो भी रात को उठ सकते हैं, इसलिए एस्थमा वर्ड इस बीमारी में भी इस्तेमाल

0: करते कार्डियक में और ब्रोंकियल। तो जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो जांच में ये पता चल जाएगा कि हम ब्रोंकियल एस्मा का मरीज है ये या कार्डियक एस्मा है। कार्डियक एस्मा में आमतौर पे पहले से ही एक हार्ट डिजीज होती है, शायद मरीज को पता भी होता है कि मुझे हार्ट डिजीज है, तो वो हेल्प करता है इस चीज में कि ये शायद कार्डियक एस्मा है। लेकिन इलाज दोनों का बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग इलाज है। जो ब्रोंकियल एस्मा की दवाइयां वो कार्डियक एस्मा में नहीं दे सकते और कार्डियक एस्मा वाली ब्रोंकियल एस्मा में नहीं दे सकते, तो दोनों में फर्क करना बहुत बहुत जरूरी है।
1: जी, उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर साहब, कीर्ति नगर न्यू दिल्ली से हमें मोहम्मद इम्तियाज और सलमा बेगम लिख रहे हैं कि कहना चाहते हैं कि ये बेहतर, बहुत ही अच्छा टॉपिक हमने लिया है और ये हमसे कहना चाहते हैं कि एस्थमा की शिकायत इन्हें है, सांस फूलने लगता है, पसली तेज चलने लगती है, लेकिन एलर्जी को कैसे पहचाने अगर है तो, और कितने प्रकार की होती है एलर्जी, क्या कारण हो सकते हैं इसके?
0: एलर्जी जो है जेनेटिक बेसिस है इसका, यानी कि परिवारों में चलती है। अगर आपके पेरेंट्स में एक तरफ से एलर्जी आ रही है, जैसे खाली मदर की साइड में है, तो 10% करीब चांस है कि उनके पुत्र पुत्री को लक्षण होंगे एलर्जी के। अगर दोनों साइड से आ रही है तो करीब 25% तक चांस हो जाता है कि नेक्स्ट जनरेशन में ये तकलीफ उभरेगी। एलर्जी का जो मुख्य लक्षण है, खासकर जो जुकाम की एलर्जी होती है, छींके बहुत आती हैं। जहां वातावरण खराब हुआ छींके शुरू हो गए, आप नहा के निकले छींके आ गई, सडन चेंज ऑफ टेम्परेचर छींके आ गई, साथ में नाक से बिल्कुल पानी जैसा नाक बहता है कि आप टिश्यू या हैंकी इस्तेमाल करते रहते हैं। कुछ मरीजों को पहले जुकाम शुरू होता है, फिर बाद में सांस में सीटी जैसी आवाज आनी शुरू हो जाती है, वो दमे में परिवर्तन हो जाता है उसका। वातावरण से बहुत अच्छा लिंक है इसका। अगर 15-20 मिनट के अंदर आप कहीं जाते हैं और वहां लक्षण शुरू हो जाते हैं तो निश्चित वो एलर्जी की वजह से ही है। तो इस तरह से हम पहचानते हैं कि आपके लक्षण का जो पैटर्न क्या है, कि कैसे हालात में वो शुरू होते हैं।
1: जी डॉक्टर साहब, साक्षी हमें दिल्ली से लिख रही है कि इन्हें धूल मिट्टी से बहुत एलर्जी है, इनको हैंकी गीला करके फेस पर रखना पड़ता है अगर ऐसा प्रॉब्लम हो। इसका क्या कोई परमानेंट इलाज है? इनकी एज है 36 और वेट है 85।
0: तो ये अवॉइडेंस की एक प्रक्रिया होगी जो आप कर ही रही हैं कि आप एक गीला हैंकी यूज करते हैं, मास्क भी इस्तेमाल की जा सकती है जैसे हम कोविड के वक्त में करते थे ना, वो मास्क अभी लोग इस्तेमाल करते हैं ऐसे वातावरण में जहाँ पे की धूल या धुआं होती है। आप किचन में काम कर रही हैं और वहाँ पे धुआं उठता है कभी कभी, जैसे तलने में तो या सब्जी पकाने में, तो वो भी लक्षण उभार सकता है। तो इनसे सबसे बचने का यही तरीका, एक तो या तो धुआं उठने ही ना दें, या अगर है वहां पे तो मास्क लगाएं।
1: क्या कोई टेस्ट करा सकती है?
0: अब टेस्ट पे आ जाएं तो ये तो हुए लक्षण। कंफर्म करने के लिए लेबोरेटरी में टेस्ट होते हैं। एक ब्लड टेस्ट होता है जिसमें हम एक IgE नापते हैं और एक ब्लड में एक सेल होता है ईओसिनोफिल बोलते हैं जिसको। तो साधारण ब्लड टेस्ट और एलर्जी का टेस्ट IgE, इससे ये कंफर्म हो जाता है कि ये जो आपके लक्षण है ये एलर्जी की वजह से है। अगर दमे की तकलीफ है तो उसके एक सांस की प्रक्रिया जो है लंग फंक्शन टेस्ट, वो भी की जा सकती है ताकि पता चले कि एस्थमा है कि नहीं है। जहां डायग्नोसिस हमारा बन गया उसके बाद आती है इलाज की। तो आज बहुत अच्छी दवाएं हमारे पास है, जैसे जुकाम की बात करें तो टॉपिकल स्प्रे होते हैं जो नाक में डाले जाते हैं, दिन में एक दो बार डालने पड़ते हैं और उससे बहुत अच्छा कंट्रोल आ जाता है। उसके लिए टैबलेट्स भी होती हैं एलर्जी की। उसी तरह से दमे के लिए भी इनहेलर या नेबुलाइजर होते हैं जो कि मरीज के रिक्वायरमेंट के हिसाब से दिए जा सकते हैं। तो इसको लक्षणों के जरिए हम पहचानते हैं, टेस्ट से कन्फर्म करते हैं और इनका इलाज सही से करें तो बहुत आराम मिल जाता है।
1: जी, तो आपने सुना श्रोताओं की कितने खास विषय पर आज हम बात कर रहे हैं, एस्थमा, एलर्जी और इन्फेक्शन जो जुड़ा है हमारे सांसों से, हमारे लंग से। लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक।

0: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: श्रोताओं, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में। डॉक्टर साहब, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे एलर्जी की, तो एलर्जी में जो पेशेंट होते हैं, क्या कई बार वो इनहेलर यूज करना उनको कारगर नहीं लगता, तो आप क्या कहना चाहेंगे, आप क्या सजेस्ट करेंगे कि इनहेलर यूज करना कितना सही है?
2: पिछले लगभग 2-3 दशकों से जो हमारा दमे का इलाज है उसमें बहुत परिवर्तन हो गया है। पहले टैबलेट्स या सिरप या इंजेक्शन से इलाज होता था, अब लगभग सभी दवाएं जो हम दमे में इस्तेमाल करते हैं वो इनहेलर के जरिए दी जा सकती हैं। अब इनहेलर 2-3 प्रकार के होते हैं, एक तो जैसे हम मीटर डोज कहते हैं, उसको दबाकर सांस खींचते हैं, वो एक बार में चला जाता है। एक पाउडर आते हैं जिसको कि घुमा के कैप्सूल को तोड़ा जाता है और वो कैप्सूल से पाउडर को इनहेल किया जाता है। तीसरा लिक्विड दवाई होती है जो कि एक बिजली का यंत्र जिसे नेबुलाइजर कहते हैं, उसमें डाल के ली जाती है। अब इसके जो इस्तेमाल करने की विधि है ये सबसे जरूरी है। पहले तो अगर मरीज ठीक से लेगा तभी उसको फायदा होगा। तो सारी दवाइयां हमारे पास इस समय मौजूद है जो हम इन 3 प्रकार में से दे सकते हैं। नेबुलाइजर आमतौर पर इमरजेंसी में इस्तेमाल किया जाता है, मीटर डोज और कैप्सूल वो मरीज घर में कर सकता है। तो मरीज को हम ट्रेन करते हैं कि इसको कैसे लिया जाए। अब इसकी एडवांटेज क्या है कि ये 5 सेकेंड 10 सेकेंड में आपके डोज ले ली और 5 मिनट के अंदर इसका असर आना शुरू हो जाता है। तो जो आपके लक्षण है वो 5 मिनट के अंदर कम होने शुरू हो जाते हैं। टैबलेट से ऐसा कभी नहीं हो सकता, तुरंत आराम मिलता है। दूसरा जो मात्रा देते हैं इनहेलर में वो टैबलेट के मुकाबले 20वां या 40वां हिस्सा होता है सिर्फ, तो इसलिए साइड इफेक्ट भी बहुत कम होते हैं। तो ज्यादा इफेक्ट, जल्दी इफेक्ट और कम साइड इफेक्ट, ये इनहेलर के फायदे हैं। इसलिए अब सारे मरीजों का इलाज इनहेलर के जरिए होता है। कौन सा इनहेलर इस्तेमाल करना है वो मरीज की चॉइस है, कौन सा वो ठीक से ले पाता है उसको एक बार ट्रेन किया जाता है और बहुत अच्छा असर। तो इसलिए बिल्कुल भी नहीं घबराना चाहिए कि हमें इनहेलर दिया गया है, इनहेलर ही सही इलाज है दमे की बीमारी के लिए।

0: डॉक्टर साहब एक कॉलर जुड़ गए हैं कॉल लाइन पर। हेलो,
1: नमस्कार मैम।
0: नमस्कार।
2: नमस्कार
1: सर। को भी नमस्कार जी।
2: नमस्कार
1: जी। मैं जामिन भाई रेडियो वाला सिरोड़ी लोनी
2: जी। जी
1: सर, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, जैसे कि हम कुछ लोगों को देखते हैं तब तब मौसम बदलता है, सर्दी से हम गर्मी की तरफ जाते हैं, गर्मी से बरसात की तरफ जाते हैं, तो कुछ लोगों को छींके आना, पानी आना, फिर उसके बाद वो ठीक हो जाते हैं, तो ये अस्थमा के लक्षण होते हैं क्या सर?
2: अब दो तरह के मरीज हम देखते हैं, एक जिनको छींके आती हैं और नाक से पानी आता है, ये एलर्जी के लक्षण हैं मौसम बदलने पे, या जहाँ धूल धुआं है, तो जैसे आजकल का मौसम है या दूसरी तरफ सितंबर अक्टूबर का, उस समय ये लक्षण बहुत उभरते हैं। कुछ मरीजों को साथ में सांस की तकलीफ भी हो जाती है, कुछ को सिर्फ छींके और नाक से पानी आता है, वो राइनाइटिस या नाक की एलर्जी होगी। अगर शुरुआती ये लक्षण है उसके बाद सांस फूलना शुरू हो जाता है तो वो दमा शुरू हो गया, तो हम ये कहते हैं कि जो जुकाम है वो छाती में आ गया। तो दोनों प्रकार के हो सकते हैं, किसी को दोनों चीजें होते हैं, किसी को सिर्फ नाक के सिम्टम्स होते हैं कि छींके आते हैं, नाक से पानी आता है, दोनों ही एलर्जी की वजह से।
0: जी डॉक्टर साहब, आलोका हमें नोएडा से लिख रही हैं कि ये सेवरल एलर्जिक हैं, इनको स्ट्रॉन्ग परफ्यूम, डस्ट, स्मोक से बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, और जबकि ये नोज ब्लॉक की भी इनको प्रॉब्लम रहती है, कभी कभी इनको रनी नोज की प्रॉब्लम होती है, उसके साथ साथ कोल्ड और ड्राई कफ भी इनको रहता है, ये क्या करें?
2: इनकी जो लक्षण का जो विवरण दिया है इन्होंने वो 100% एलर्जिक है।
0: जी,
2: अवॉइडेंस सबसे जरूरी चीज है एलर्जी के लक्षणों से कंट्रोल करने के लिए। जैसे ये बताती कि अगर उसको अवॉइड करते तो लक्षण कम होते हैं। अब कभी कभी होता है कि हम अवॉइड कर ही नहीं सकते, जैसे वायु प्रदूषण है, अब आपने दिल्ली में रहना है तो प्रदूषित वायु को इनहेल करेंगे ही, या कोई तेज स्मेल है आसपास, या लोगों ने परफ्यूम लगाया हुआ ऑफिस में तो भी आप इनहेल करेंगे
0: जी।
2: तो वो अवॉइड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी सूरत में अगला तरीका ये है कि हम उसका इलाज करें, और जैसे मैंने पहले बताया था कि हमारे पास अब जो दवाएं मौजूद हैं, जैसे जुकाम के लिए भी स्प्रे होते हैं नाक में डालने वाले, तो वो मरीज दिन में एक बार या दो बार डालता है, तो डालने के बाद जो भी ऐसे फैक्टर्स हैं जिनसे लक्षण उभरते हैं, जैसे कि धुआं या कोई स्मोक या तेज स्मेल, फिर वो लक्षण नहीं उभरते, तो इलाज जो है वो बहुत सक्सेसफुल है इन लक्षणों का
0: जी।
2: तो डॉक्टर से बात करके सही आप दवाई लें और निश्चित आपको फायदा होगा
0: जी। डॉक्टर साहब एक और कॉलर है हमारे साथ। हेलो।
3: हेलो, नमस्कार दोनों को जी।
0: नमस्कार,
3: मैं मिसेस बेदी बोल रही हूँ पंचकुला हरियाणा से।
0: जी सवाल पूछिए आप अपना।
3: डॉक्टर साहब मेरे दो क्वेश्चन है, एक तो ईएसआर जो बड़े होते हैं ये किस चीज की इन्फेक्शन होती है? मेरी एक फ्रेंड है, उसका वेट लॉस भी हो रहा है और काफी ज्यादा है उसके वो
2: ईएसआर। अच्छा।
3: हाँ जी ईएसआर। और दूसरा मेरी जो मेड है एक, उसको एलर्जी है चावल, राजमा, काली दाल, मेन चीजें जो सब लोग खाते हैं।
2: हाँ।
3: खाते ही उसको वॉमिटिंग हो जाती है और सिर भारी हो जाता है। ये मेरे दोनों क्वेश्चन आप बताएंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा।
2: हाँ जी। सी पहला प्रश्न आपका ईएसआर के बारे में। ईएसआर एक ब्लड टेस्ट होता है, जैसे हम हीमोग्लोबिन करवाते हैं ना, उसी टेस्ट के साथ साथ ईएसआर भी नापा जाता है। अब ईएसआर से कौन सी बीमारी ये पता नहीं चलता, लेकिन ये पता चलता है कि शायद कोई बीमारी, यानी कि उसको नॉन स्पेसिफिक कहते हैं, कि वो कौन सी बीमारी ये तो नहीं बताएगा, लेकिन इतना जरूर बताता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है। लेकिन ईएसआर बढ़ने के कुछ कारण इन्फेक्शन के बिना भी होते हैं, जैसे किसी को आर्थराइटिस होता है तो भी ईएसआर बढ़ जाता है। तो ईएसआर अगर बढ़ा है तो कारण पता लगाना होगा, तो इसलिए और भी टेस्ट करने जरूरी है, खाली ईएसआर से तो नहीं होगा। इतना जरूर है कि ईएसआर का मतलब बढ़ा हुआ है तो कुछ ना कुछ तो है लक्षण।
3: तो डॉक्टर साहब और कौन से टेस्ट कराने पड़ेंगे?
2: नहीं, वो तो लक्षण पे डिपेंड करता है ना, जैसे अगर आपको जोड़ों की दर्द है तो आर्थराइटिस की जांच होएगी।
3: नहीं नहीं, उसको ऐसा कुछ नहीं है। टीचर है, रोज आती जाती है, ट्रेवल करती है, पर भूख नहीं लगती।
2: या बुखार है साथ में?
3: नहीं,
2: तो
3: बस उसको खाना एक टाइम खाती है, वो भी बड़ी मुश्किल।
2: तो ये थोड़ा फोन पे मुश्किल हो जाता है क्योंकि मरीज से बात करनी होती है। तो मैं तो ये सलाह दूंगा कि एक अच्छे डॉक्टर से मिल लें कि भाई ये क्यों हो रहा है, कि ये सर क्यों बढ़ा हुआ है, भूख क्यों नहीं लग रही है, तो कारण का पता चल जाएगा और एडिशनल टेस्ट करके। दूसरा जो खाने की वजह से आपने सवाल पूछा, बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि मरीज कई तरह के खाने छोड़ देते हैं, बच्चों में छुड़वा देते हैं, केला छुड़वा देते हैं, दही छुड़वा देते हैं, चावल छुड़वा देते हैं। जरूरी नहीं है कि इन पदार्थों से दमा या एलर्जी के लक्षण उभरते हैं। कभी कभी होता है कि आपकी तकलीफ चल रही है, आपने केला खाया तो आप

0: सोचते हैं कि शायद उसी की वजह से हुआ होगा. तो ज्यादातर केसेस में हम देखते हैं फूड एलर्जी जो है ना वो एक वहम ज्यादा है और एक्चुअल उसका जो है ना बहुत कम होता है. अगर किसी को होता है बार बार तब तो वो उसको अवॉइड करना है. उसका एक ही तरीका है अवॉइड करना. किसी को उसको फिश से हो जाती है, नट से हो जाती है, तो ऐसे केसेस में अवॉइड की. लेकिन इसके जो टेस्ट होते हैं ना उनसे कुछ ज्यादा पता नहीं चलता है. स्किन टेस्ट भी करते हैं तो हिस्ट्री जिसे हम कहते हैं कि मरीज खुद ही बताता है कि मैंने ये जब भी लिया मुझे हुआ और जब नहीं लिया तो ठीक हुआ, वो इस बात को शो करता है कि फूड एलर्जी है. तो इसकी पूरी तरह से प्रूव होने पे कि इस चीज की वजह से ही है तभी उस फूड को छोड़ना चाहिए. ऐसे वहम में हमको फूड नहीं छोड़ देना चाहिए.
1: जी डॉक्टर साहब, अब बात करते हैं हम इन्फेक्शन की. तो सरल भाषा में अगर हम कहें तो इन्फेक्शन क्या है, कोई इससे कब और कैसे ग्रसित होता है?
0: इन्फेक्शन में दो चीजें बहुत जरूरी है. एक बग जिसको हम कहते हैं माइक्रोब
1: जी,
0: बैक्टीरिया
1: जी,
0: या वायरस जो हाँ, कि वातावरण में है,
1: फंगस
0: वो होना चाहिए. अब हम कोविड जैसे, कोविड भी इन्फेक्शन थी, टीबी भी इन्फेक्शन है, निमोनिया भी इन्फेक्शन है. इन सबके कीटाणु अलग अलग है. एलर्जी इन्फेक्शन नहीं है, एस्थमा इन्फेक्शन नहीं है, लेकिन एस्थमा में इन्फेक्शन हो सकती है. तो ये कीटाणु जो है ये वातावरण में है. ये आमतौर पर अगर पहले से मरीज आपके पास बैठा है, जैसे उसको जुकाम है, उसने वो छींका या खांसी की, तो जो बारीक बारीक कीटाणु के कण होते हैं वो हवा में आ जाते हैं और जो सामने बैठा व्यक्ति है वो उसे सांस के जरिए इनहेल कर लेता है, तो उधर वो ट्रांसफर हो जाता है. कोविड में तो सब जानते, तभी हम मास्क डालते थे उसको प्रिवेंट करने के लिए. तो एक बार कीटाणु आपके शरीर में आ गया और जो अगर लंग की इन्फेक्शन है तो वहां पे वो पनपना शुरू हो जाता है और वहां फिर उसके लक्षण शुरू हो जाते हैं. जहां लक्षण शुरू हो जाते हैं वो इन्फेक्शन की बीमारी हो गई. आज के डिस्कशन में अगर हम देखें तो फ्लू जिसे हम वायरल इन्फेक्शन कहते हैं, निमोनिया जो एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ये हमारी कॉमन चेस्ट इन्फेक्शन है. और एक क्रॉनिक इन्फेक्शन है जिसको ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं. तो फ्लू जो है एक जुकाम की तरह शुरू होता है लेकिन इसमें बुखार होता है. जो सिंपल एलर्जी होती है उसमें बुखार नहीं होता. दमे के मरीज को बुखार नहीं होगा. बुखार का मतलब है कि इन्फेक्शन है. तो जुकाम साथ में गला दर्द और शरीर टूटा टूटा रहना, हफ्ते 10 दिन की बात है ये इन्फेक्शन, तो वो पॉइंट करता है कि फ्लू है. जिसे हम वायरल कह देते हैं तो उसका टेस्ट भी किया जा सकता है प्रूव करने के लिए और इसका इलाज अच्छी तरह से किया जा सकता है, मौजूद है. जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो निमोनिया, उसका ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक्स से होता है. तो अगर निमोनिया तो उसके लक्षण भी बुखार, छाती में दर्द, बलगम आना, ये लक्षण होते हैं.
1: जी डॉक्टर साहब, हमारे को एक मैसेज मिला है मोहम्मद इम्तियाज का दिल्ली से. वो हमसे पूछ रहे हैं कि जिस तरह से एस्थमा का सिम्टम्स मालूम आसानी से हो जाते हैं, लेकिन एलर्जी की पहचान कैसे करें और क्या ब्राउन शुगर गुड़ खाने से क्या पॉल्यूशन में हमें फायदा करता है?
0: लक्षणों से पहचान होती है एलर्जी की. और जैसे हम पहले बात कर चुके हैं, छींके आना
1: जी,
0: नाक से पानी बहना शुरू हो जाना, ये या आंखों से कभी कभी पानी आना या आंखें लाल हो जाना, ये लक्षण है एलर्जी के. और ये अगर वातावरण ऐसा है जहां आप गए और 10-15 मिनट में शुरू हो गया तो निश्चित ये एलर्जी की वजह से ही है.
1: जी डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे इन्फेक्शंस की, तो दूषित खाना और जो पानी है उससे इन्फेक्टेड होने का खतरा कितना ज्यादा होता है?
0: अब इन्फेक्शन शरीर के किसी
1: भी, हम सब बाहर जाते हैं रोज, और जब बाहर जाते हैं तो खाना और पीना होता ही है.
0: अब इन्फेक्शन शरीर के किसी भी भाग में हो सकती है. अभी पहले कॉलर के सवाल पे हमने बात की थी फ्लू और निमोनिया की, वो है चेस्ट इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन. अब खाने से जो इन्फेक्शन होती है ना वो पेट की इन्फेक्शन है, जिसमें कि एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस, डायरिया, वॉमिटिंग, ये लक्षण है. जो कि हम जैसे कोई ऐसी अपने पुरानी चीज खा ली जो कि बासी है, उसमें कीटाणु बनने शुरू हो गए. जैसे दूध फट गया था, दूध खराब था, दही खराब थी. खासकर इस मौसम में गर्मी में तो ये बहुत होता है कि खाना अगर एक दिन का भी पुराना है तो उसमें इन्फेक्शन होने के खतरे ज्यादा रहते हैं. तो इसके लक्षण मुख्यतः पेट से लिंक होते हैं कि पेट में दर्द, दस्त या लूज मोशंस, वॉमिटिंग और साथ में हल्का बुखार. तो ये सजेस्ट करते कि हमारे पेट में इन्फेक्शन हो गई है.
1: जी डॉक्टर साहब, घर से निकलने से पहले और घर लौटकर ऐसा क्या करें कि हम इन्फेक्शन से बच सकें?
0: सबसे जरूरी तो ये है कि पर्सनल हाइजीन, कि हम मुंह हाथ अच्छी तरह से धोएं जब भी हम वापस आते हैं, क्योंकि बहुत सारे कीटाणु जो हैं हम साथ लेके आते हैं.
1: जी.

0: भी वस्तु हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे हमारा पेन हो गया किसी ने इस्तेमाल किया तो, या हमारा बैग है उसके ऊपर, या हमने जैसे मेट्रो या उस पर ट्रेवल किया, आपने रेल पकड़ी या सीढ़ी के ऊपर हाथ लगाया कहीं, तो वह सब ट्रेवल करते हैं। इसलिए अपने पर्सनल हाइजीन की हमको हाथ को हमेशा अच्छी तरह से धोना है, जब भी हम खाना खाएं उसके बाद या कोई खाना खाने से पहले भी उसको धोएं तो इन्फेक्शन जो है पेट में जाने के चांसेस कम हो जाते हैं।
1: जी ये तो हो गया कि घर आकर और हाँ, घर से निकलते वक्त
0: निकल बाहर जो है, अगेन मैं कोविड का एग्जांपल दूंगा, मास्क डालते थे क्योंकि हम
1: आज उसकी आदत थोड़ी कम हो गई है, मास्क है
0: पर अभी भी दिखते हैं कुछ बहुत जो हेल्थ कॉन्शियस होते हैं वो डालते हैं और वो एक बहुत कारगर इफेक्टिव तरीका है इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने का।
1: जी साथियों, एलर्जी अस्थमा और इन्फेक्शन इस विषय पर हम अपनी बातचीत जारी रखेंगे एक ब्रेक के बाद।
2: इस भागती दौड़ती जिंदगी में भी तन और मन को निरोग किया जाए,
3: क्यों ना रेडियो डॉक्टर सुनकर स्वस्थ रहा जाए।
2: रेडियो डॉक्टर प्रतिदिन दोपहर 3 बजे FM रेनबो 102.6 MHz पर।
3: कार्यक्रम का फीडबैक और सुझाव भेजें health airdelhi@gmail.com पर।

0: आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में। आज हम बात कर रहे हैं एस्मा, एलर्जी और इन्फेक्शन से संबंधित परेशानियों की, और इस खास विषय पर हमें जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर एस के छाबरा। डॉक्टर साहब हम आगे बढ़े इससे पहले एक कॉलर है कॉल लाइन पर, उनका कॉल ले लेते हैं। हेलो
1: हेलो

0: जी
1: हाँ नमस्कार डॉक्टर साहब।
2: हाँ नमस्कार।
1: डॉक्टर साहब ये पूछना था कि सर्दी के दिनों में जैसे बेटे को होता है जैसे बात करते समय फोन में बात करते समय आवाज खांसी सी होती है, मतलब हल्की हल्की है।
2: और कोई लक्षण?
1: नहीं और कुछ नहीं, कभी होता है बात करते समय जैसे आवाज खांसी सी हो जाती है बात करते करते।
2: तो अभी तक हम जो दमे की बात कर रहे थे, हमारा जो फोकस था वो सांस के ऊपर था, पर कुछ मरीज ऐसे होते हैं कि जिनको सांस नहीं सिर्फ खांसी के लक्षण उठते हैं, और वो भी एलर्जी की वजह से हो सकता है। तो वही पैटर्न कि मौसम बदलने पे होता है या किसी खास चीज के संपर्क में आने से होता है, धूल धुएं से हो जाता है या भागने से होता है। और खांसी का पैटर्न क्या है कि एक बार शुरू हो तो 1-1.5 मिनट तक चलती रहती है। अगर ऐसी खांसी है तो उसे भी हम दमे की तरह ही मानते हैं एलर्जी की वजह से, तो उसे जांच करनी जरूरी है कि खांसी का और कारण है या एलर्जी की वजह से है। तो आप जरूर संपर्क करिए डॉक्टर से, पता चले कि ये गले की कोई बीमारी है या एलर्जी की वजह से ऐसा हो रहा है। अगर एलर्जी है तो उसका इलाज लगभग दमे की तरह ही होगा और फायदा होगा।
0: उम्मीद है कि इनको इनके सवाल का जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर साहब, नरदेव सिंह चौहान उत्तराखंड से हमें लिख रहे हैं कि अस्थमा में ऋतु का बड़ा रोल होता है, सर्दियों में मरीज को ज्यादा प्रॉब्लम होती है, कृपया सर्दियों में क्या सावधानी रखें इसके बारे में बताएं।
2: मौसम बदलने में भी तकलीफ होती है, कुछ मरीजों को ज्यादा गर्मी में, कुछ मरीजों को ज्यादा ठंड में तकलीफ होती है। तो बचाव वो सबसे जरूरी है, अवॉइडेंस। जैसे आप तो उत्तराखंड से हैं, अब कहीं ऐसे एरिया में जहाँ ठंड बहुत पड़ती है तो वहाँ अवॉइडेंस बड़ी मुश्किल है, लेकिन घर को जितना वार्म रख सकें, अपना पर्सनल वार्म्थ का ख्याल रखें कि कपड़े पूरे डालें सर्दियों में, ताकि सीधा एक्सपोजर जो ठंड का है ना वो ना हो। दूसरा, अवॉइडेंस के साथ साथ इलाज भी बहुत ज़रूरी है, कि सब
0: जी
2: कुछ अवॉइडेंस से संभव नहीं हो सकता। अवॉइडेंस से कम हो सकते हैं लक्षण लेकिन जा नहीं सकते, तो उसका इलाज भी बहुत ज़रूरी है। और जो दवाइयाँ होती हैं दमे की, उसका एक फोकस प्रिवेंशन ही होता है कि हम लगातार दवाई एडवाइस करते हैं कि आप लेते रहें इसको, तो उससे शरीर की जो एक स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाती है। तो आप फिर ऐसे वातावरण को बर्दाश्त कर लेते हैं कि जिनकी वजह से लक्षण उभरते हैं, जैसे कि ठंड है
0: जी
2: तो आप दवाई लेंगे तो वो सर्दी का मौसम भी बर्दाश्त हो जाएगा।
0: जी डॉक्टर साहब, रविंद्र पाठक और आशा पाठक नीदरलैंड से हमें लिख रहे हैं कि उन्हें कार्यक्रम बहुत पसंद आ रहा है और बहुत अच्छी जानकारी मिल रही है उन्हें हमारे इस कार्यक्रम से, धन्यवाद। और वो लिख रहे हैं साथ में कि कुछ प्लांट्स भी एलर्जी होती है उन्हें, हाथों में खारिश होने लगती है, इसको किस तरह से दूर किया जा सकता है।
2: बिल्कुल, जैसे हम एलर्जी की बात कर रहे थे तो प्रकृति में कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि बड़ी मनमोहक और सबको अच्छी लगती है, किसी किसी के लिए बहुत खराब होती हैं। जिक्र फूलों का है, फूल बड़े प्यारे लगते हैं लेकिन कुछ मरीज हैं कि जैसे फूल सामने आया वो छींके शुरू हो जाते हैं, नाक से पानी हो जाता है। तो ये हिस्ट्री से पता चलता है कि मरीज बताता है कि जो ऐसे मौसम में वो फूल निकलते मेरे बाग में और मेरे को तकलीफ शुरू हो जाती है, या ऐसी जगह जाते हैं जहाँ वो फूल रखे हुए थे मुझे तकलीफ शुरू हो गई। वहां पे अगेन बात आ जाती है अवॉइडेंस की, कि आप ना जाए, और अगर जाना मजबूरी है, अवॉइड नहीं होता तो फिर दवाई ले, तो उससे आपकी जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाएगी और लक्षण नहीं उभरेंगे। अब एलर्जी स्किन में भी हो सकती है, जैसे आप बता रहे हैं कि खुजली होती है, तो स्किन एलर्जी, नोज एलर्जी, आई एलर्जी, सांस की एलर्जी, ये सब बेसिक जो प्रॉब्लम है वो एलर्जी का ही है
0: जी।
2: तो इसके लक्षण को पहचाने और इसका इलाज किया जाए
0: जी। डॉक्टर साहब, अजय हमें गाजियाबाद से लिख रहे हैं कि अगर बच्चों में अस्थमा हो जाए तो क्या ये उम्र बढ़ने के साथ ठीक हो सकता है, और अगर बच्चा इनहेलर ले रहा है तो क्या ये शरीर के लिए नुकसानदेह तो नहीं
2: जी। बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल और हर माता पिता पूछते हैं जब बच्चे को लेके आते
0: जी,
2: हैं
0: जी।
2: और आपका सवाल अगर कहें तो लगभग 50% चांस है कि बच्चे जैसे 12 से 18 साल की उम्र तक पहुंचेंगे लक्षण लगभग खत्म हो जाते हैं, अगर ठीक से उनका इलाज किया जाए। ये बहुत जरूरी है, हम इस भरोसे नहीं बैठ सकते कि अपने आप ही चले जाएंगे, जब तक लक्षण है तब तक इलाज करना है, और अगर फेवरेबल केस रहता है तो वो पेशेंट रिकवर कर जाएगा। हालांकि कभी कभी देखा जाता है कि कुछ वर्षों के बाद लक्षण वापस लौट सकते हैं, तो सतर्क रहना चाहिए कि दोबारा तो नहीं हो जाते। लेकिन बच्चों में जो इसका प्रोग्नोसिस कहते हैं, इसको कि रिकवरी के चांसेस कहते हैं, तो निश्चित बच्चों में हो जाता है, लगभग 50% रिकवर कर जाएंगे, लेकिन जब तक है तब तक इलाज करना बहुत जरूरी है
0: जी। डॉक्टर साहब, हम बात इन्फेक्शन की कर रहे हैं, तो कोई इंसान अगर बार बार इन्फेक्शन से ग्रसित हो

0: तो उसका क्या कारण हो सकता है?
1: अब जहां तक चेस्ट इन्फेक्शन की बात है तो दो मेजर इसमें कारण है, एक तो वायरल इन्फेक्शन जिसे हम फ्लू कहते हैं, दूसरा निमोनिया जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है, और एक क्रॉनिक है ट्यूबरक्लोसिस जो कि एक अलग ही विषय है।
0: जी बिल्कुल।
1: अब फ्लू और निमोनिया, इसके बचाव के तरीके अब हमारे पास हैं।
0: जी।
1: एडल्ट वैक्सीनेशन, अब वैक्सीनेशन से सब लोग जानते हैं कि बच्चे जैसे पैदा होके 5 साल तक 10 साल तक उनको वैक्सीन लगती है बीमारियों से बचने के, उसी तरह से वयस्कों में भी एडल्ट्स में वैक्सीन लगती है, फ्लू की वैक्सीन है, निमोनिया की वैक्सीन है। हेल्दी लोग भी लगवा सकते हैं, और जिनको किसी भी प्रकार की तकलीफ, जिसको डायबिटीज है, हार्ट डिजीज है, सांस की बीमारी है, उन्हें निश्चित फ्लू की वैक्सीन और निमोनिया की वैक्सीन लगवानी चाहिए। ये कब लगनी है ये आपके चिकित्सक बता देंगे। फ्लू की वैक्सीन आमतौर पर हर साल लगती है, निमोनिया का एक अपना स्केड्यूल होता है, एक वैक्सीन जिंदगी में सिर्फ एक बार लगती है, एक 5 साल के गैप में लगती है। तो आपके जो चिकित्सक है वो एडवाइस करेंगे, लेकिन प्रिवेंशन पॉसिबल है इन्फेक्शन से वैक्सीनेशन के थ्रू, और बहुत जरूरी है।
0: और डॉक्टर साहब, टेस्ट कौन कौन से होते हैं अगर हम बात करें एस्थमा, एलर्जी और इन्फेक्शन तीनों की, अगर हम टेस्टिस की बात करें तो कौन कौन से टेस्ट है जिनसे पता लगाया जा सकता है?
1: इसको हम एक एक करके ले लेते हैं। एलर्जी के लिए हमने जैसे बात की थी, एक आईजीई लेवल होता है, एक ब्लड में इओसिनोफिल होता है। दमे के लिए सांस की प्रक्रिया होती है, इसे लंग फंक्शन टेस्ट कहते हैं। और इन्फेक्शन के लिए हमको कीटाणु की जांच करनी होती है, वो किसी भी शरीर के फ्लूइड में जैसे कि बलगम में या ब्लड में, उसको अगर हम लेबोरेटरी में जांच करके पता लगा लेते हैं कि ये कौन सा कीटाणु जो है वो अंदर गया शरीर के जिससे इन्फेक्शन हुई है, तो सब ये लेबोरेटरी बेस्ड है। जिसका कि कौन सा टेस्ट कर रहे हैं इसके लिए हिस्ट्री की, मरीज के लक्षण क्या थे उसके हिसाब से फिर हम तय करते हैं कि क्या जांच करनी है, कि एलर्जी की है या इन्फेक्शन की जांच है।
0: जी श्रोताओं, आपको हम बता दें कि अगर आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आ रहा है तो आप हमें अपना फीडबैक दे सकते हैं इस मेल आईडी पे। मेल आईडी नोट कर लीजिए, feedback@rainbow.gmail.com। डॉक्टर साहब, आपने बात की वैक्सीनेशन की, तो प्रिवेंशन की अगर हम बात करें तो तीनों के लिए प्रिवेंशन क्या क्या है?
1: एस्थमा की प्रिवेंशन के लिए वातावरण सबसे जरूरी है। अगर आपको पता चल जाता है कि ये फूल है या जहाँ धुआं है या कोई धूम्रपान कर रहा है या कुछ ऐसे दीवारों में सीलन है या कोई कभी कभी खाने की वस्तु है, इनसे लक्षण उभरते हैं तो वो अवॉइड किए जाने चाहिए निश्चित। और अगर अवॉइड नहीं हो सकते तो इलाज है, इलाज से आपकी जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाएगी उसको बर्दाश्त करने के लिए। इन्फेक्शन की जो प्रिवेंशन है वो वैक्सीन के जरिए ही है। अगर कोई दूसरा कीटाणु जिससे इन्फेक्शन हुई है तो उसका इलाज होता है, हर चीज के लिए वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, लेकिन निमोनिया की वैक्सीन और फ्लू की वैक्सीन अवेलेबल है जो कि लगानी चाहिए इससे बचने के लिए।
0: डॉक्टर साहब, इन तीनों परेशानियों से निजात पाने के लिए या इन्हें कंट्रोल में करने के लिए लाइफस्टाइल का कितना बड़ा रोल है?
1: देखिए, अच्छा खाना और एक्सरसाइज ये हमारी जनरल इम्यूनिटी को बढ़ाता है। तो कोई भी बीमारी हो, अगर हम बैलेंस खाना खाते हैं और नियमित एक्सरसाइज करते हैं तो खाली दमा या इन्फेक्शन नहीं, बहुत सारी बीमारियां जो हैं ये कम हो जाती हैं या इवन अवॉइड भी हो जाती हैं। तो एक हेल्दी लाइफस्टाइल बहुत जरूरी है। अब जैसे दमे का मरीज है, अगर उसका वजन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो वो वजन की वजह से ही सांस फूलता रहेगा उसका। तो इसलिए एक आइडियल बॉडी वेट, एक बैलेंस्ड खाना, रेगुलर एक्सरसाइज, इनके बहुत फायदे हैं और ये जरूर करना चाहिए।
0: जी डॉक्टर साहब, ऐसा कोई विषय या ऐसा कोई सवाल हमसे छूट गया हो जिसके बारे में आप बताना चाहते हो तो आप बताइए, क्योंकि कार्यक्रम में अब समय कम रह गया है।
1: सबसे
0: तीनों उसके लिए।
1: जी, तो एक तो हमारे देश में मैंने देखा है कि लोग अपने आप ही इलाज कर रहे थे केमिस्ट से लेके, ये बिल्कुल भी ना करें, बहुत बार गलत इलाज होता है। तो सेल्फ ट्रीटमेंट नहीं करना है, डॉक्टर से बात करके जांच करा के सही इलाज करें। और जहां तक दमे का प्रश्न है, इनहेलर से बिल्कुल भी ना घबराएं, इनहेलर बहुत अच्छी पद्धति है दवाई देने की और बहुत अच्छा उसका असर आता है। तो डॉक्टर की सलाह पे चलें, और एलर्जी हो या इन्फेक्शन हो या दमा हो, इनका कंट्रोल संभव है।
0: जी, तो श्रोताओं, हमने बात की डॉक्टर एस के छाबड़ा से, उन्होंने बताया कि अस्थमा, एलर्जी और इन्फेक्शन से जुड़ी परेशानियों में क्या करना चाहिए और क्या नहीं। डॉक्टर छाबड़ा जो कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट है पल्मोनोलॉजी, स्लीप एंड क्रिटिकल केयर, प्राइमस हॉस्पिटल।

0: हॉस्पिटल न्यू दिल्ली के, इसके साथ साथ वो हैं फॉर्मर डायरेक्टर प्रोफेसर वल्लभ भाई पटेल चेस इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली के। डॉक्टर साहब, आप हमारे कार्यक्रम में आए, हमें बेहद खास जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
0: और साथियों, इसके साथ ही अपने दोस्त पूजा को दीजिए इजाजत, आज के लिए नमस्कार।
2: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।

बहुत प्यार करते हैं ना आप अपने वतन से, अपने देश से। हम यहां सरहद से कोसों दूर बैठे हैं और बात कर रहे हैं अपने अपने देश प्रेम की। तो सोचिए, सरहदों पर बैठने वाला हर वो सिपाही, हर वो अफसर जो मां भारती की उस सरहद की रक्षा कर रहा है, आसमान में जमीन पर वो चांद सितारे हमारे, वो धरती मां का मिट्टी का वो लेप, और उसी लेप के बीच में वो भावनाएं तमाम हिंदुस्तानियों के लिए। संदेश टू सोल्जर्स एक ऐसा शो है जहां पर हम आपकी मुलाकात करवाते हैं हिंदुस्तान की फौज के उन सितारों से, सुसज्जित अफसरों से, उन फौजी भाइयों से जो अपना परिवार पीछे छोड़ के आपके परिवार को सुरक्षित रखने का बीड़ा उठाते हैं। और आज हमारे साथ स्टूडियो में ऐसे ही एक जाबाज अफसर मौजूद हैं, मेजर एस के यादव, जिन्होंने 15 साल की उम्र में एनडीए ज्वाइन की और उसके बाद 14 से ज्यादा साल उन तमाम जगहों पर भारत मां की रक्षा की सेवाएं दी अपनी। हमने कई जाबाज अफसरों और सिपाहियों के साथ आपकी मुलाकात कराई है, लेकिन आज हम टैंक रेजिमेंट की बात करेंगे। टैंक के अंदर की वो जिंदगी, टैंक का वो लोहा जो टक्कर लेता है दुश्मनों से, टैंक रेजिमेंट की तैयारी, उसका फौलाद आज हम सुनेंगे संदेश टू सोल्जर्स में।

0: आइए मुलाकात करते हैं यहां मेजर एस के यादव के साथ। स्वागत कर रहा हूं सर, और पूरे हिंदुस्तान का ये नमस्कार, ये सलूट स्वीकार कीजिए।
1: शुक्रिया, थैंक यू।
0: कैसे हैं सर आप?
1: एब्सोल्युटली फाइन, फर्स्ट क्लास।
0: आज हमने आपको सिविलियन ड्रेस में बुलाया है, लेकिन जज्बा वही है जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस की जो ताकत है, भारत माँ की वो ड्रेस आपकी।
1: बिल्कुल, वंस ए सोल्जर ऑलवेज ए सोल्जर, एज दे से, यू नेवर लीव द आर्मी। एक बार आप आर्मी ज्वाइन कर लें तो एक फैमिली बन जाती है
0: जी,
1: और आप चाहे रिटायर हो जाएं, सर्व कर रहे हों, वो पूरी फैमिली एक जैसी होती है। टिल यू रीच योर लास्ट स्टेज, द होल फैमिली, योर रेजिमेंट इज विद यू इन गुड एंड बैड टाइम्स। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस ब्यूटिफुल इंडियन आर्मी।
0: आप तो टीनेज में ही इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के साथ जुड़ गए। इंडियन आर्मी,
1: मैं वन ऑफ द यंगेस्ट ऑफिसर्स था। फर्स्ट अटेम्प्ट एनडीए में चले जाएं आप हमारे टाइम पे, तो आप 15.5 साल की उम्र में आप एनडीए जाते हैं, आपकी दाढ़ी भी नहीं हुई होती, फर्स्ट टाइम शेव होता है वहाँ पे जाके। तो
0: रैगिंग हुई थी सर आपकी?
1: बहुत।
0: उसके बारे में
1: याद है,
0: 15 साल की उम्र में सर फौज में चले गए आप, और रैगिंग तो हुई होगी।
1: 15 रैगिंग की वजह से मैं कहूँगा आई शुड बी थैंकफुल ऑन द हाइंड साइट, क्योंकि वो रैगिंग नहीं, हमको वो स्ट्रेंथ, हमको वो ताकत, हमको वो निश्चय दिया है जो हमारे सीनियर्स ने हमें सिखाया, वो एक फाउंडेशन बन जाती है।
0: ओके,
1: और वो फिर फॉर लाइफ टाइम आपके साथ रहती है वो।
0: ओके,
1: और वो बॉन्डिंग जो होती है नेशनल डिफेंस अकेडमी में, वो रगड़ा के साथ ही होती है।
0: ओके,
1: बेसिकली रगड़ा होता है। एंड देयर इज लॉट ऑफ एकेडमिक्स, ऑफ कोर्स वी हैव ए डिग्री फ्रॉम जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी,
0: ओके,
1: इन बीएससी एंड बीए। अदर देन दैट द सब्जेक्ट्स आर ऑल मिलिट्री साइंस, मिलिट्री ज्योग्राफी एंड देयर आर फील्ड एक्सरसाइजेस। लेकिन हम जो एनडीए से जो होते हैं, वी आर बॉन्डेड सो वेल। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का नाम भी बॉन्डेड है।
0: ओके,
1: और अभी भी हम लोग रिटायर हो चुके हैं, पीपल माय कोस्टमेट्स हैव बीन जनरल्स, ब्रिगेडियर्स, बट वी स्टिल रिमेन एंड टॉक लाइक एज इफ वी वर इन एनडीए।
0: आपने व्हाट्सएप का नाम लिया, तो आज एक बार फिर से अपने श्रोताओं को बता दूं कि हमारा जो व्हाट्सएप का नंबर है, आप उसके साथ, उसके जरिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप का नंबर है 9868107070, 9868107070। कोड वर्ड्स कुछ ऐसे होने चाहिए सर कि जल्दी समझ में आ जाए।

0: आपको 15 साल की उम्र में किसने प्रेरित किया कि आप फौज में जाइए, एनडीए में जाइए?
1: देखिए, मेरे फादर एयरफोर्स में थे
0: जी,
1: और हम लोग एक फौजी फैमिली कह लीजिए आपको। मेरी सिस्टर आर्मी में डॉक्टर थी, वो उन्होंने शादी भी एक आर्मी ऑफिसर से की जो कि एज ए आर्मी कमांडर जनरल रिटायर हुए हैं। और हमारे टाइम पे फौज के अलावा कुछ सोचा ही नहीं था हमारी फैमिली में।
0: ओके, फौज में ही जाना है।
1: शुरू से ही एनडीए की तैयारी करनी है और यूनिफॉर्म पहननी है, क्योंकि फादर को देखा था यूनिफॉर्म में, और कोई कुछ उसके अलावा कुछ सोचा ही नहीं।
0: मदर तैयार थी कि फौज में जाइए, इतने सारे फौजी घर में, बोला नहीं उन्होंने ये बच्चा भी जाएगा वहां।
1: उनके हस्बैंड भी थे फौज में, उन्होंने फौज के बाहर फ्रेंकली कोई लाइफ ही नहीं देखी हमने। हमारा जो फौजी कंटोनमेंट्स होते हैं, दे आर ऑल्सो ए क्लोज निट फैमिली, सारा सेल्फ सफिशिएंट होते हैं वहाँ पे, फ्रॉम ऑफिसर्स मेस टू टेनिस कोर्ट, स्विमिंग पूल, योर मूवी थिएटर, एवरीथिंग इज सेल्फ सफिशिएंट। यू डोंट रियली हैव टू गो आउट इन स्मॉल लिटिल स्टेशंस टू द सिविलियन एरिया।
0: सो इज दैट एडवांटेज और You think you miss something अगर civilian area में नहीं जा रहे, कुछ ऐसा?
1: नहीं, ऐसी something? कोई बात नहीं है। Actually, most of the cantonments or army stations are in the field areas. So field area में तो you have to be self-sufficient, because आपको कुछ मिलता नहीं है इतना जो आपको चाहिए, चाहे राशन हो, चाहे जो entertainment चाहिए, वो तुम्हारे आस पास ही होनी चाहिए।
0: जी,
1: मेट्रो सिटीज में दूसरी बात है।
0: ओके,
1: we have of course approach to malls and cinema halls and so on. कभी कभी आते हैं फील्ड में, अगर आप पोस्टिंग कर लें तो अगली पोस्टिंग मोस्ट प्रोबेबली टाउन में दे देते हैं उसको थोड़ा रेस्ट देने के लिए।
0: ओके, मुझे ये बताइए कि आपने अपने फादर के साथ, आपके फादर की तो पोस्टिंग होती रहती होगी, जब वो एयरफोर्स में थे तब आप ज्यादा स्टेशंस में गए, अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग सिटी, लाइफ स्टाइल अलग, भाषा अलग, खान पीन अलग, पढ़ाई भी अलग हो गई होगी।
1: यस, बिल्कुल सही बात है। ये एक एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी, बट आई टेक इट एज एन एडवांटेज, बिकॉज वन वे ऑफ लुकिंग एट इट इज दैट यू एक्चुअली कम टू सी सो मेनी प्लेसेस, ए न्यू प्लेस एवरी टू इयर्स, थ्री इयर्स, एंड आई रियली लव दैट। एंड एक्चुअली वेरी फ्रेंकली स्पीकिंग, आई स्टिल लव टू ट्रैवल बिकॉज ऑफ दैट, परहैप्स इन थिंग विच आई हैव गॉन थ्रू। एंड आफ्टर ए वाइल मेरे फादर ने सोचा, भाई बहुत घूमना हो गया बच्चों को, तो मुझे हॉस्टल में डाल दिया, ए फोर स्कूल में, सुखोटा पार्क दिल्ली में, बोर्डिंग स्कूल,
0: टैप्स कहते थे,
1: टैप्स, अब टैप्स हो गया,
0: पहले आपका और मेरा एक कनेक्शन है,
1: एएफसीएस होता था।
0: ओके,
1: सो उसमें बोर्डिंग स्कूल में डाला तो डिसिप्लिन और बढ़ जाता है, एनडीए की तैयारी हो गई, सो दैट इज हाउ द एकेडमिक्स वॉज। Luckily, I went through the NDA exam in the first attempt.
0: जी,
1: and NDA चले गए।
0: और हमने अपने श्रोताओं को बताया कि आप टैंक रेजिमेंट के साथ जुड़े, T-72 टैंक के बारे में हम बात करते हैं, अहमदनगर में। आपकी पहली पोस्टिंग गुजरात में थी?
1: नहीं, पहली पोस्टिंग हमारी रेजिमेंट में होती है
0: जी,
1: सबसे पहले। उसके बाद वहाँ 6 महीने बिता के हम लोग एक यंग ऑफिसर्स कोर्स करते हैं।
0: okay.
1: जो हमारा टैंक्स का कोर्स अहमदनगर में होता है।
0: okay.
1: तो वहाँ पे हमको एक्चुअली रियली टैंक के बारे में पूरा पता चलता है, उसकी ट्रेनिंग, फायरिंग, उसका डीएनएम जो होता है, ड्राइविंग, मेंटेनेंस, गनरी, उसकी रेडियो कैसे चलती है।
0: okay.
1: और उस जमाने में जब मैंने ज्वाइन किया था तो हमारे पास विजंत होते थे, और उसके बाद T-55 से हम T-72 में ग्रेजुएट हुए
0: जी,
1: जिस पर मैं इंस्ट्रक्टर भी था। मैंने अहमदनगर में आई वाज इंस्ट्रक्टर ऑन T-72 टैंक, एंड अब तो T-90s एंड अर्जुन आ गए हैं, उसके भी अपग्रेडेड
0: वर्जन है। सर, टैंक के बारे में मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि हमारे जो श्रोता हैं दे वुड आल्सो वांट टू लिसन, कि टैंक का पहला जब आप देखते हैं, एक स्ट्रक्चर देखते हैं तो फौलाद लगता है पूरा, है ना? सो यू वेंट देयर बाय चॉइस और
1: My first choice in the Indian Military Academy was the Tank Regiment.
0: Okay.
1: And I joined a regiment called the Deccan Horse.
0: Deccan Horse.
1: जो कि 1790 में रेज हुई थी, as the private army of the Nizam of Hyderabad.
0: All right.
1: And then it went through various transformation and it became Royal Deccan Horse and then the Deccan Horse after 1947. And we had a Muslim squadron in before 1947.
0: Achha.
1: After partition, that squadron went into Pakistan in a regiment called Probin's Horse.
0: Okay.
1: For quite some

0: time, actually, strangely, we used to have a common newsletter also, I think, where Robin's Horse sort of became a sister regiment.
1: Okay.
0: Though in on the other side of the border.
1: Okay.
0: And we had one officer also till quite late going to London, UK, to attend the British officers who used to host their fathers, or they themselves served in the Royal Deccan Horse or the Province Horse. So,
1: sir, quite a Deccan Horse ke saath judne ke baad wo jazba kaisa aaya, kuch wo andar ki aapke andar ki bhavna, you want to share with us?
0: Yes, I was always a cavalry man. Hum black berets pehnte hain, काली टोपी
1: जी,
0: एंड हम लोग वन ऑफ द टू फाइटिंग आर्म्स हैं, एक इन्फेंट्री होती है, एक टैंक्स होते हैं. जो इन्फेंट्री होती है वो बेसिकली जब लड़ाई होती है तो अगर पहाड़ों में है तो इन्फेंट्री आगे होती है, टैंक्स नहीं जा सकते. लेकिन पंजाब या राजस्थान

0: host.
1: जी.
0: Their fathers or they themselves served in the royal Deccan house or the province house. So
1: sir, it was quite a Deccan house के साथ जुड़ने के बाद वो जज्बा कैसा आया कुछ वो अंदर की आपके अंदर की भावना you want to share with us?
0: Yes, I was always a cavalry man. हम black berets पहनते हैं काली टोपी.
1: जी.
0: And हम लोग one of the two fighting arms हैं. एक इन्फेंट्री होती है एक टैंक्स होते हैं. जो इन्फेंट्री होती है वो बेसिकली जब लड़ाई होती है तो अगर पहाड़ों में है तो इन्फेंट्री आगे होती है टैंक्स नहीं जा सकते. लेकिन पंजाब या राजस्थान जो प्लेन्स में होता है तो सबसे पहले जब लड़ाई शुरू होती है टैंक्स आगे जाते हैं. वो लीड करते हैं.
1: विच इज T-92
0: T-72 T-55 T-54 होते थे उसके पहले. अब T-90s कॉम्पैक्ट टैंक. उसमें एक गनर होता है एक कमांडर होता है एक ड्राइवर होता है.
1: उसके पीछे भी कोई वजह है कि आप अंदर उतना स्पेस नहीं दे रहे हो?
0: नहीं, उसमें बिकॉज स्पेस इसलिए नहीं है बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ अदर गैजेट्स इन दैट. बहुत सारे गैजेट्स हैं. यू नो मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई है. यू नो गनरी के गैजेट्स हैं रेडियो के गैजेट्स हैं ड्राइविंग एंड मेंटेनेंस के गैजेट्स हैं. सो यू डोंट वांट टू वेस्ट एनी टाइम. देयर इज लॉट ऑफ एमिनिशन स्पेस दैट इज केप्ट टू लोड एंड रीलोड द बैरल.
1: राइट. तो आज के टैंक्स भी डिजिटाइज हो गए हैं
0: सॉर्ट ऑफ. डिजिटाइज तो कंप्यूटर तो नहीं है अंदर एज फार एज आई नो नाउ.
1: देखिए सिविलियन हूँ सिविलियन वाले सवाल पूछूंगा.
0: हाँ जी.
1: क्या पता आपके पास एक जीपीएस है आपको अपनी लोकेशन अपना रूट आप देख रहे हो. यू नेवर नो.
0: यस.
1: अंदर आपके पास जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है वो शायद बदल गई हो. इट्स मोर टुवर्ड्स कुछ ऐसा जानना चाह रहा
0: हूँ. के पास पहले एक नेविगेशन सिस्टम होता था क्वाड्रात.
1: ओके.
0: वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा सिस्टम था खाली कमांडिंग ऑफिसर्स के टैंक में लगा होता था.
1: जी.
0: लेकिन अब तो यू नो जीपीएस है तुम्हारे पास. इनफैक्ट आई थिंक एक्चुअल वॉर टैंक्स की वॉर रियली स्पीकिंग हुई नहीं है.
1: ओके.
0: लेकिन नेविगेशन इज नॉट ए बिग प्रॉब्लम नाउ एज यू नो यू हैव इवन गूगल मैप्स.
1: वही मैं जानना चाह रहा था आपसे कि पर आप सोचिए एक अगर मैं सिविलियंस के लिए थोड़ा समझना चाहूँ. सोचिए हमारे टैंक्स हैं एक एक समय में अगर 10 टैंक्स अटैक के लिए जा रहे हैं. आपने सारा जो प्लान है आपका जो मिशन है वो सब कैलकुलेटेड है.
0: करेक्ट.
1: पर किसी वजह से आपको थोड़ा सा डाइवर्ट होना पड़ा. चार टैंक्स इधर गए या उधर गए या आप ऐसे माहौल में फंस गए जहां आपके यू नो व्हाट यू प्लान्ड कुड नॉट हैपन. नाउ यू हैव टू फेस. सो हु गाइड्स द रूट. वहां आप कैसे वो गाइडेंस लेते हैं?
0: सी देखिए ऐसा होता है पहले तो ये सारी डिस्कशन सैंड मॉडल पे हो जाती है.
1: ओके.
0: कि क्या करना कैसे करना है कहाँ जाना. देर इज हमें मैप्स हमारे जमाने के टाइम में मैप्स इशू होते थे ग्रिड मैप्स और उस पर हम लोकेशन कर देते अपने ऑब्जेक्टिव्स और कैलकुलेट कर लेते थे कितना टाइम है किस स्पीड पे कितने टाइम लगेगा वहाँ पहुँचने के लिए.
1: जी.
0: फिर हमारे ईच रेजिमेंट में एक तीन स्क्वाड्रन होते हैं और हर स्क्वाड्रन में ट्रुप्स होते हैं तीन ट्रुप्स.
1: ओके.
0: हर ट्रुप में तीन टैंक होते हैं. तो यू नो सो बेसिकली यू हैव ए स्क्वाड्रन कमांडर एट ट्रुप लीडर्स जो सबसे जूनियर होते हैं. देन यू हैव ए स्क्वाड्रन कमांडर एंड देन यू हैव द रेजिमेंटल सीओ. दे ऑल आर ऑन अ रेडियो नेट टुगेदर.
1: ओके.
0: सो जो आपको इंस्ट्रक्शन मिल रही हैं वो आपको इंट्रा नेट पे सारी इंस्ट्रक्शन सेम मिल रही है. अल्फा स्क्वाड्रन आप लेफ्ट जाइए चार्ली स्क्वाड्रन आप राइट जाइए ब्रावो स्क्वाड्रन होल्ड करिए यहाँ पे होल्ड फायर ये सारी होती है. जो सीओ होता है वो एक दूसरे नेट पे होता है जो उसके बॉस के साथ होता है.
1: Okay.
0: ब्रिगेड कमांडर या जीओसी के साथ उसको वहां से इंस्ट्रक्शन आ रही है. वो इंस्ट्रक्शन हमें नहीं मिलती है.
1: ओके.
0: हम लोग अपने रेजिमेंटल इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं जो सीओ ऑर्डर करता है कि ठीक है राइट फ्लैंक से फायर आ रही है चार्ली स्क्वाड्रन आप राइट फ्लैंक पकड़िए अल्फा स्क्वाड्रन आप लेफ्ट फ्लैंक.
1: स्पोर्ट्स वाली लैंग्वेज आ रही है राइट फ्लैंक लेफ्ट फ्लैंक फुटबॉल वाली.
0: इनफैक्ट दैट इज द लैंग्वेज यूज्ड आल्सो इन द आर्मी.
1: अच्छा.
0: देयर फ्लैंक्स आर देयर. देखिए बेसिक वॉर का टेक्निक होता है कि अगर एनिमी फायर कर रहा है तो आपको एनिमी का हेड डाउन कर रखना है.
1: ओके.
0: क्योंकि अगर आपने अटैक करना है उसके पहले एनिमी को बोलना है भाई यू मेक हिम बिजी एल्सवेयर. यू टेल योर आर्टिलरी कि वो गोले बरसाए उनके ऊपर वो ट्रेंचेस में है जहाँ पर भी है टैंक्स में. और यू टेल योर एयरफोर्स टू बम्बार्ड ए पर्टिकुलर टैंक सेक्शन.
1: ओके.
0: सो दैट द एनिमी इज बॉग डाउन एंड इट इज बिजी बिकॉज इट्स डाउन बिकॉज इट इज बीइंग बम्बार्डेड फ्रॉम ऑल ओवर एंड दैट इज द टाइम यू हैव योर ऑलरेडी सीक्रेट इंस्ट्रक्शंस टू गो फ्रॉम द

0: left or the right or from the rear and attack the enemy. You don't want to face an enemy which is up and about and free to fire at you.
1: शायद यही guns जो हैं कारगिल में भी कुछ ऐसे ही हो रहा था.
0: हाँ.
1: उसके बारे में बात करेंगे सर, क्योंकि एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेने का मन कर रहा है. आप लोगों की तरफ से ये गीत हमारे सिविलियन भाइयों के लिए.

0: संदेश टू सोल्जर्स आप सुन रहे हैं, मेरा नाम है मुनीश जॉली और हमारे साथ आज के जो मेहमान है संदेश टू सोल्जर्स में वो है मेजर एस के यादव। आपका निकनेम मिकी है,
1: करेक्ट?
0: एंड व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड इट?
1: क्लास टू में मेरी स्कूल टीचर ने मेरा नाम रख दिया था मिकी माउस और दैट नेम स्टक। वेरी फनीली आर्मड कोर में अगर आप किसी को बोलोगे डू यू नो मेजर स्वदेश कुमार यादव, दे विल लुक ए ब्लैंक, बट इफ यू टेल देम डू यू नो मेजर मिकी यादव, दे विल ऑल नो।
0: ओह वंडरफुल, रियल मेट्स आप लोग रहते हैं फौज में, है ना सर?
1: एब्सोल्युटली।
0: हम लोग टैंक्स के बारे में बात कर रहे थे, टैंक की लाइफ। आपने कहा कि अंदर की लाइफ लगता है कि टैंक जा रहा है, टैंक ने फायर किया, ये हुआ हुआ, लेकिन अंदर की लाइफ उतनी आसान नहीं होती, आप बिजी रहते हैं, है ना?
1: 55 डिग्रीज तक हीट में समर्स में टेम्परेचर जाता है, उसके अंदर रहना पड़ता है और एक्चुअल वॉर सिनेरियो में तो आपका कपोला ऊपर से बंद है अगर सीन है,
0: ओके,
1: एंड यू आर एक्चुअली लुकिंग थ्रू ए सॉर्ट ऑफ ए पेरिस्कोप,
0: या
1: उसमें से आप देख रहे हैं एनिमी को, सो इट्स ए वेरी टफ सॉर्ट ऑफ ऑपरेशनल लाइफ इन द टैंक, इनसाइड द टैंक।
0: ऑलराइट, हम जब 26 जनवरी की परेड में देखते हैं कि टैंक्स आ रहे हैं और जो भी कमांडर हैं वो सल्यूट ले रहे हैं माननीय राष्ट्रपति जी से, लेकिन टैंक चलाने वाले कोई और हैं, तो वो उसी पेरिस्कोप से रूट देख रहे हैं?
1: हाँ, इनफैक्ट आई मस्ट इन्फॉर्म यू दैट मैंने वन ऑफ दिस परेड्स कमांड की है।
0: ओह वाओ, इट वाज
1: कॉल्ड कॉम्बैट टीम, एज ए यंग मेजर था तब मैं
0: जी,
1: तो मैंने रिपब्लिक डे परेड पे आई गेव द सल्यूट टू द प्रेसिडेंट। तो उसमें हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, बेसिकली एक गनर होता है और जब सल्यूटिंग डाइस पे जाते हैं तो गनर को इशारा मिल जाता है कब उसने गन को राइट टर्न करना है और डिप करना है, विच इज द सल्यूट, रेस करना है, सामने जाना है और कैरी ऑन करना है। तो दैट इज द ऑर्डर, दैट इज ऑल द गनर्स टेक्निक, द कमांडर हैज टू ओनली सल्यूट विद हिज हैंड।
0: सर बहुत मतलब जिसे कहते हैं ना एक गूज़बम्स आते हैं, क्योंकि 26 जनवरी की परेड पर मैं भी जो आंखों देखा हाल है वो हम लोग कमेंट्री कर चुके हैं वहाँ पे, बट जब आप लोग टैंक्स लेके वहाँ जाते हैं ना, हम लोग को बड़ा बहुत गौरवान्वित फील करते हैं कि ये हिंद की सेना जा रही है।
1: हाँ, टैंक एक सिंबल बन गया है सॉर्ट ऑफ आर्मर्ड आर्मी का, जो आर्मर्ड विंग है उसका, जो तोपखाना कह दीजिए
0: जी,
1: तो इट इज़ बिकम अ सॉर्ट ऑफ, यस इट इज डिवेस्टेटिंग एंड इट इज आई हैव हैड ए गुड टाइम इन माय टैंक रेजिमेंट, बिकॉज फील्ड फायरिंग होती है हमारी, प्रैक्टिसेस होती है रेंजेस पे, जिसमें तो काफ़ी कुछ ट्रेनिंग होती है उस पर, दैट इज हाउ यू सॉर्ट ऑफ टैंक वॉरफेयर इज ऑपरेटेड।
0: और वो जो आपकी ट्रेनिंग है दैट इज a tough training, it is not like chalo yaar aao practice karte hain, no, it's like that's the real war
1: real
0: situation,
1: real life scenario war situations create hoti hain
0: ji
1: Rajasthan deserts mein, aur wahan jaakar hum log practice karte
0: hain। Okay, सर मैंने कुछ मैसेजेस मंगाए हैं कुछ बहुत देश प्रेम के साथ, बहुत सारे हमारे जो लिसनर्स हैं वो मैसेज भेज रहे हैं, आप विश्वास नहीं करेंगे कि

0: अहमदनगर से ही एक मैसेज आया है और वो कह रहा है मेरा नाम गजानन शिंदे है, गांव करजत जिला, और उसका नाम अभी अहिल्या नगर कर दिया गया है। सर ने अभी अहमदनगर की बात की तो मुझे बहुत गर्व महसूस हुआ। आप शायद इनको तो गजानन शिंदे जी को नोन टू यू
1: नॉट नोन टू मी बट यस देर आर लॉट ऑफ शिंदे इन दैट रीजन एंड अहमदनगर का जो आमटको स्कूल सेंटर एंड स्कूल है
0: जी
1: वो एक सेंट्रल पॉइंट है, मेनली उसी की वजह से वो टाउन ग्रो किया एक तरह से।
0: ओके
1: जो सारी ट्रेनिंग जो हमारी होती है चाहे रेडियो की ड्राइविंग एंड मेंटेनेंस की गनरी की ट्रेनिंग टैक्टिकल ट्रेनिंग वो सारी जो बेसिक्स होती है वहीं पे हम लोग सीखते हैं
0: एंड एवरीवन नोज अबाउट इट, देयर इज नो सीक्रेट इन इट। क्योंकि आप एयर पे बोल रहे हैं तो मैं अगर अहमदनगर के लोकेशन भी बता दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं।
1: इट्स अ पीस स्टेशन एंड इट इज बेसिकली ट्रेनिंग फॉर ट्रेनिंग हम लोग जाते हैं
0: शिरडी के पास जो अहमदनगर है उसकी बात कर रहे हैं। आप ट्रेनिंग की बात कर रहे थे वहाँ सर, वो जो आप फायर करते हैं जब टैंक से उसकी एक्यूरेसी पे तो बहुत काम करते होंगे आप लोग।
1: हाँ तो उसी के लिए हम फील्ड फायरिंग ट्रेनिंग करते हैं
0: जी,
1: जो कि हमारे रेंजेस हैं वेरियस प्लेसेस पे, बबीना में है, झांसी के पास, तो वहाँ पर जाके हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, गनरी देखते हैं पूरी एंड उसमें एक चीज़ होती है आपको इंटरेस्टिंग बताऊँगा कि जब मैं यंग ऑफिसर था तो एक एम ऑफ होता है, मैं एक एक्सरसाइज में था कॉल्ड ब्रास टैक्स जो ऑपरेशनल था, ऑलमोस्ट वी हैड गॉन अक्रॉस एंड आई वाज कमांडिंग स्क्वाड्रन एंड वहाँ पे हम लोग चाय पी रहे थे सुबह सुबह, रात को हमें ट्रैवल, हम खाली रात को अपने कैमोफ्लाज नेट निकाल कर रात को घूमते थे और अपनी लोकेशन चेंज करते थे एवरी नाइट क्योंकि हम लोग स्पॉटेड हो जाते थे और डे टाइम में अपने कैमोफ्लाज नेट लगा के चुप के बैठते थे तो डे टाइम में हम सोते थे रात को जगते थे।
0: ये कौन सी लोकेशन थी सर अभी बताना ठीक है?
1: समवेयर इन द डेजर्ट बॉर्डर, यू नो उसके जैसलमेर के आगे आसपास बॉर्डर के टाइम
0: जी।
1: तो वहाँ पे मुझे याद है सुंदर जी आर्मी चीफ थे और मैं चाय वगैरह चाय नहीं पी रहा था, सॉरी 11 बज गए थे, 10-11 बज गए थे। सो
0: मत बताइए क्या पी रहे थे रात के 10-11 बजे।
1: दो तीन हेलीकॉप्टर्स ऊपर घूम रहे थे तो उस जमाने में ये जहरो वगैरह इतना नेविगेशन की जो आप बात करें इतना नहीं था। जो पायलट्स होते थे वो अपने थाइस पर एक मैप रखते थे और उसको
0: आजकल भी रखते हैं।
1: हाँ, रखते हैं वो,
0: हम लोग रखते हैं।
1: डेजर्ट में बड़ी मुश्किल होती है नेविगेशन, कई बार खो जाते थे कि भाई कहाँ जाना है, तो हम लोग अपनी टोपी शोपी लाते थे और नीचे आ जाते थे, निकलते थे, एनडीए का ही निकला कोई कोस्ट हेलीकॉप्टर। तो एक हेलीकॉप्टर नीचे निकला, उसमें से निकले सुंदर जी एंड एक थे जो हमारे तब के अरुण सिंह जी राज्य रक्षा मंत्री।
0: ओके
1: तो वो आ गए और सुंदर जी मुझे पहचान गए क्योंकि मैं एडीसी था आर्मी चीफ का, तो उसने बोला मिकी आप यहाँ क्या कर रहे हैं, मैंने कहा सर मैं आई एम कमांडिंग स्क्वाड्रन हियर, तो उन्होंने बोला आप इनको अरुण सिंह जी को ना टैंक के बारे में बताइए, तो मैं इंस्ट्रक्टर था तो मैं टैंक पे उनको ले गया ऊपर, बट आई वाज सरप्राइज दैट ही हैड सो मच नॉलेज अबाउट दैट टैंक।
0: अच्छा
1: तो अभी आपने एमिंग की बात की तो उन्होंने मेरे से एक चीज पूछा कि आप अगर एम ले रहे हैं एनिमी के टैंक के ऊपर तो आप सीधा फायर करते हैं के थोड़ा, तो मैंने कहा नहीं सर, उनको मालूम था एक चीज होती है एम ऑफ,
0: ओके
1: अगर यहाँ से आप फायर कर रहे हैं 1 किलोमीटर दूर
0: जी
1: तो आप सीधा फायर करेंगे तब तक टैंक निकल जाएगा, तो आपको एक एम ऑफ लेना पड़ता है।
0: गॉट इट,
1: कि आपने उस पॉइंट पे लाना है और कैलकुलेट करना है कि वो टैंक उसी पॉइंट पे यूं ऐसे तभी आएगा,
0: मूविंग व्हीकल पे आपको कैसे स्ट्राइक करना है। ओके
1: सो वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स एंड वेरी टेक्निकल एंड आई वुड कॉम्प्लीमेंट दैट टाइम आरआरएम, आई मीन ही हैड लॉट ऑफ नॉलेज।
0: कोई कॉम्बैट कभी मौका मिला?
1: हाँ मुझे वैली शैली में नॉर्थ ईस्ट में मौका मिला है। एक्चुअल लड़ाई तो 71 वॉर की देखी नहीं, हम तो बच्चे थे
0: जी।
1: कारगिल वॉर तक मैंने फौज छोड़ दी थी, शायद नॉट लेफ्ट एंड टेकन पार्ट, बट देन टैंक्स का इतना रोल नहीं था वहाँ पर।
0: पर पहाड़ों में हम लोग जब बात कर रहे थे कि जिस तरीके से शेलिंग हम लोग करते थे, आप अभी हमें टैंक्स के जब आप बता रहे थे कि किस तरीके से आप आपका जो दुश्मन है उसका हेड डाउन करने पर मजबूर करते हैं, कैन वी कम बैक टू दैट?
1: यस सो व्हाट हैपेंस इज दैट लेट मी टेल यू अबाउट कारगिल आल्सो। कारगिल में भी जो लड़ाई हुई है ऊपर जो चढ़े हैं, जो सपोर्टिंग जो फायर्स दिए हैं वो आर्टिलरी गन्स ने दिए हैं, वो सॉफन करते हैं टारगेट को। सॉफन मतलब कि जो बंकर्स हैं ऊपर उनके ऊपर धड़ाधड़ बहुत हैवी फायरिंग होती है।

0: और दैट इज द ओनली वे वेयर जो इन्फेंट्री है उसको एक वर्टिकल क्लाइंब करनी है, तो ऊपर से तो वो शूट डाउन हो जाएंगे, तो उनका सिर नीचे रखना है, उनका ध्यान निकालना, उनको इतनी हैवी बम्बार्डमेंट करनी है कि वो खड़े होकर शूट भी ना कर पाए और हमारी फौज वहां तक पहुंच जाए. तो दैट इज एन अटेम्प्ट. उसमें मरते हैं और कुछ जांबाज जो होते हैं वो पहुंच जाते हैं वहां जाके और फिर हैंड टू हैंड फाइट होती है,
1: जो कि हुआ, मतलब हमने देखा वहां.
0: बिल्कुल हुआ.
1: हमारे पीवीसी जो हैं परमवीर चक्र से विजेता हमारे शो में भी आ चुके हैं.
0: यस यस एब्सोल्युटली.
1: संजय कुमार.
0: और यही चीज जब पंजाब साइड जब प्लेन्स में होती है वहां टैंक्स का रोल,
1: वहां टैंक्स का रोल,
0: क्योंकि वहां पे कोई चढ़ाई नहीं करनी है, वहां पे बैटल फील्ड आ रही है, टैंक कॉलम्स आ रहे हैं, आरटी आ रही है, आपने टेक ओवर करना है, तो टैंक्स लीड करते हैं वहां पे. और आजकल तो बीएमपी आ गई है जिसमें, और टैंक्स पर भी इन्फेंट्री को हम अपने पीछे कैरी करते हैं.
1: राइट.
0: तो हम आगे तक जाते हैं और टैंक्स एक्चुअली गो एंड अटैक, टेक ओवर द प्लेस एंड कैरी ऑन फॉर द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव. इन्फेंट्री जो पीछे आ रही होती है बीएमपी में, वो उतरती है और फिजिकली वहाँ पहुंच जाती है पॉइंट पे, अपने ट्रेंचेस डिग करती है और वो बैठ जाती है, ये हमारा हो गया एरिया.
1: बट सर, आज के टाइम में, जस्ट लेमैन क्वेश्चन, टैंक जहाँ पे हम मिसाइल की बात कर रहे हैं, ड्रोन अटैक्स की बात कर रहे हैं, तो टैंक के लिए इट्स मोर डिफिकल्ट द रेजिमेंट, और इट्स लाइक दे हैव देयर ओन वेज टू हैंडल सच अटैक्स.
0: यू सी, ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है
1: जी,
0: दिस वॉज ए टोटली डिफरेंट ऑपरेशन. इसमें फॉर द फर्स्ट टाइम we actually did not really cross the border and we had remote controlled drones. We set off missiles without crossing the border. The aircraft shot their targets without really crossing the border. It was a totally different game, and I would credit this war a lot to the Indian artillery, because artillery ka role bada heavy tha idhar. They have these long range guns and they had their own targets and they were doing it. Mauka nahi mila operation sindur mein, shayad agar war 2-4 din aur chalti to armored aur infantry bhi andar jaake fir karna padta to wo dusri baat thi, lekin wo hua nahi.
1: Okay. Right sir, ek hamare listener hain and he is from Tamil Nadu, Sri Rangam Rajesh, Sri Rangam Tiruchirappalli, Tamil Nadu se likh rahe hain message. एंड आपको गुड इवनिंग कहते हो, कह रहे हैं कि बॉन्डेड मेजर एस के यादव सर, मिकी यादव सर, ग्रीटिंग्स टू योर बॉन्डेड द कंपनी है. एंड ऑफकोर्स हम यहाँ पर उनका जो मैसेज पढ़ रहे हैं, कह रहे हैं मराठा ग्रीटिंग्स टू योर बॉन्डेड व्हाट्सएप टू एंड योर MH-16 अहमदनगर अहिल्या नगर मराठा बॉन्डेड रेजिमेंट टू एंड बॉन्डेड कैवलरी कैवले यादव सर टू. आई डोंट नो व्हाट ही मीन्स बाय दैट, बट something he's written typical of Maharashtra is vanakkam, and that is something very sweet.
0: Yes,
1: somebody
0: yes,
1: known
0: yes.
1: to you?
0: Yes, no, not known to me.
1: Okay.
0: But you know, vanakkam I think is not a Maharashtrian word, perhaps a Tamil word.
1: Tamil Nadu se likh
0: rahe hain, aur he has the spirit and
1: sara kiya, jai hind, jai Maharashtra, jai Tamil Nadu, jai Bharat, and that's the spirit that we live with,
0: na cavalry regiment ko officers ko kai baar cavalier bol jaate hain. So that is what he's meant.
1: ओके. सूरज जी हमें दिल्ली से कह रहे हैं और वो कह रहे हैं मैं 20 वर्ष का हूं और सिविलियन हूं, बहुत डिसिप्लिन रहना चाहता हूं, कभी कभी मुश्किल होता है लेकिन आप लोगों की बातें सुन के प्रोत्साहन मिलता है. और साथ ही साथ हम आगे बढ़ रहे हैं सर, आपने ऑपरेशन सिंदूर की जब बात की तो मैं फिर से जानना चाहूँगा कि अगर आप थोड़ा सा इफ इट्स अलाउड टू डिस्क्लोज, हमारी टैंक रेजिमेंट एक्टिव तो थी पर कितना, मतलब बहुत चौकन्नी भी थी एंड इट्स लाइक
0: No. In entire operation Sindoor mein, all our fighting arms, whether the tanks, infantry, they were in operational stage. Chutti leave was all cancelled. One did not know which way the war would go.
1: Okay.
0: And initial war, jo shuru hua hai, that was all, as I said, an air force war, an artillery war.
1: Yeah.
0: The tanks and the infantry was not used, but they were operationally ready. To go in should the orders come, and they were absolutely ready to.
1: Okay. मैं सीधे tough questions पूछता हूँ सर आपसे, क्योंकि आप tank regiment, आप उसका अंग रह चुके हैं, you've headed your own group. Has it become more difficult now to step into the enemy zone इस modern era में?
0: You see, देखिए ऐसी बात है कि technology जिसके पास है, I would say he has an upper hand.
1: Superior.
0: Yes.
1: Okay.
0: So apparently the Chinese

0: did give them a lot of technology, due to which there were some early, they tried to do something here and there. Turkey intervened, gave them the drones and stuff like that.
1: जी
0: But we are, देखिए, technically and otherwise, Pakistan is no match to the Indian army at all. And I'm saying this on air. It is no match at all. In a live war, in a conventional war today, they would not last more than 72 hours at the most. Not at all. There's no match at all.
1: सर, हमें न्यूज़ ऑन एआईआर के माध्यम से हमारी सरहदों के पार फिजी आइलैंड से लेकर ब्राज़ील, कनाडा, यूरोप, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, एशियन कॉन्टिनेंट में सुना जा रहा है. दैट्स अ बोल्ड कमेंट, अ स्टेटमेंट दैट
0: Oh,
1: यू
0: I
1: गिवन.
0: meant every word of it. And knowing the Indian Army, the capabilities, yes, it has not been tested fully in Operational Sindoor. But should it be repeated ever, I think it'll come to light what the Indian Army means about.
1: ऑपरेशन सिंदूर हुआ, अफसोस की बात है ना सर. और एक तरीके से हम एनिवर्सरी मना रहे हैं, थोड़ा दुख है कि पहलगाम में वो चीज़ हुई और उसके
0: एब्सोल्युटली
1: बाद भारत ने जवाब दिया. दुख है कि हमारे को सिविलियन लाइव्स खोनी पड़ी, उसका तो दुख है. एक छोटी सी, अगर आप परमिशन दे तो एक छोटी सी झलकी ऑपरेशन सिंदूर की लेते हैं, और इस छोटे से किस्से में सब कुछ समझ में आ जाएगा. और आपका जो जज्बा मैं देख रहा हूँ सर आपकी आंखों में, आह, लाजवाब है सर. इसे सुनते हैं सर.
2: हम बचा देगा, कोई बात नहीं. बेहतर करेंगे. क्या हुआ इसको, क्या हुआ? ओके, डोंट वरी, डोंट वरी. यू ओके? यू नीड अ वाटर सर? अपने आप बोले ना मुझे.
3: क्या बोलते, भेलपुरी खाली से मेरा पति साइड में था, एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी.
2: यहाँ पे
3: उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी.
4: इंडस वाटर्स ट्रीटी ऑफ 1960 विल बी हेल्ड इन अबेयंस विद इमीडिएट इफेक्ट.
5: आई से टू द होल वर्ल्ड, इंडिया विल आइडेंटिफाई, ट्रैक एंड पनिश every terrorist and their backer.
6: ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था.
7: It was deemed essential that the perpetrators and planners of the 22nd April attack be brought to justice.
8: 9 terrorist camps were targeted and successfully destroyed.
9: These locations are Lahore, Gujranwala, Chakwal, Rawalpindi, Attak, Bahawalpur, Miano, Chor and near Karachi.
10: To target civilian population, it's extremely unfortunate. It's just very, very shameful.
11: We're not going to get involved in the middle of war. That's fundamentally none of our business.
12: That terrorism and funding and backing terrorist organizations has been and was part of Pakistan's history.
13: This was time to convey some message to our adversaries.
14: We were, of course, prepared.
15: Few things have been said at the level of the Prime Minister.
16: भारत पर आतंकी हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा.
15: And this has never happened in the history of independence.

0: ऐसा तो नहीं है कि वहां से अटैक नहीं है, अटैक्स तो बहुत आए लेकिन सारे विफल किए हमने।
1: एब्सोल्युटली, उनके बेसिकली ड्रोन अटैक्स थे। अटैक तो क्या आया था उनका, मतलब एक एक आध कोई मिसाइल उन्होंने दिल्ली की तरफ भी डाला था, जो कि मेरे ख्याल से मिडवे पंजाब में कहीं ऑलरेडी शूट डाउन कर दिया गया था
0: जी। दैट वाज द नियरेस्ट। बट हाउ डू यू नो कि वो दिल्ली की तरफ आ रहा था सर? हमारी टेक्नोलॉजी है जो मिसाइल फायर होता है उसका रूट पता लग जाता है।
1: जब एनालाइज करते हैं जो मिसाइल को तो उसकी रेंज देख लेते हैं ना, अगर लाहौर से उस एरिया से जहाँ से अगर लॉन्च किया है, अगर वो दिल्ली रेंज में है तो ऑब्वियसली इट्स ए सिटी विच इज बीइंग टारगेटेड। सो इट वॉज डाउंड, इट वॉज एब्सोल्युटली शॉट डाउन। So that's a big thing, and I think that was the only real thing which was threatening to the city, and I was very surprised that they started saying that Delhi has been bombarded and Delhi is gone and Delhi is finished all.
0: You heard that?
1: Yeah, I mean they were saying abhi Delhi pe bombarded ho gayi hai, ye bombardment ho gayi hai. I mean all false fake news.
0: Sir, hamare traffic jam mein phasenge tab unhe pata lagega ki how difficult it is to go out from here. एनीवे सर, ये तो हम बात कर रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर की और ये चर्चा हम जारी रखेंगे।

0: आप सुन रहे हैं एक खास प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स, और बहुत ही खास हमारे साथ यहाँ पे हमारे गेस्ट हैं आज के, और वो हैं मेजर एस के यादव। और बहुत सारे लोग आपको, आपके जो कॉलीग्स हैं वो आपको मेजर मिकी यादव भी कहते हैं। ओके, आप लोग का एक सॉलिड ग्रुप है, आपने कहा कि वी आर स्टिल बॉन्डेड टुगेदर। व्हाट्सएप का आपने कहा था कि ग्रुप है, तो इन ऑल कितने लोग होंगे उसमें?
1: एनडीए का ग्रुप है, हम लोग करीब 350 लोग थे जो पास आउट हुए थे एनडीए से। देखिए, एनडीए का ग्रुप अलग है, आईएमए का ग्रुप अलग होता है, जो एनडीए के थ्रू नहीं गए लेकिन डायरेक्ट एंट्री होते हैं, तो दो ग्रुप्स हैं।
0: ओके,
1: तो एनडीए को हम बॉन्डेड बोलते हैं, बॉन्डेड ग्रुप है।
0: तो वो जब ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था तब आप लोग कैसी बातें कर रहे थे?
1: और डिस्कशंस होती थी और डिबेट्स भी, क्योंकि उसमें एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, हम तीनों थे कोस्टगार्ड। तो एयरफोर्स वाला अपना एक्सपर्ट बताता था, आर्मी वाला अपना, और नेवी वाला, वो जो देवर नेवी वाज ऑपरेशनली रेडी एक्चुअली फॉर द ब्लॉकेड।
0: मेरा अगला यही सवाल था कि सर आपको तो फर्स्ट हैंड रिपोर्ट मिल रही होगी।
1: हाँ, ऑन द ग्रुप वॉट एवर दे आर ऑल्सो दे यूज टू प्रिडिक्ट, दे टू से वॉट शुड बी डन, वॉट वॉज नॉट डन राइटली, वॉट वॉज डन राइटली, एंड वी यूज टू डिबेट ऑल दैट।
0: एंड ऑफकोर्स एक जज्बा बॉलीवुड भी तो लेकर आता है ना आप लोगों के लिए। आई एम श्योर आप गीत सुनते हैं कभी, गीत सुन के भी एक जज्बा जोश आ जाता है। हम लोगों को तो आता है, आप लोगों को भी आता है?
1: एब्सोल्युटली।
0: आकाशवाणी के साथ आपका कैसा लगाव रहा है?
1: पर्सनली मेरा फेवरेट है आपका रेनबो, बिकॉज इट गिव्स मी यू नो लॉट ऑफ रेट्रो म्यूजिक ऑल्सो, इट गिव्स मी ऑल सॉर्ट्स ऑफ म्यूजिक, सो आई लाइक इट, इट्स माई फेवरेट।
0: एफएम गोल्ड भी है जिसमें,
1: एफएम गोल्ड है, आई लाइक इट।
0: तो आपने कब वास्ता कब पढ़ा आपका रेडियो से?
1: देखिए, रेडियो तो एवर सिंस वी वर कमीशनड, हमारे पास तब ट्रांजिस्टर होता था, एक छोटा सा एफएम तो नहीं था, तब ऑल इंडिया रेडियो चलता था, चाहे बॉर्डर पे हो, कहीं भी हो। इनफैक्ट आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, एक ANPRC 25 रेडियो सेट होता था। हम लोग जब रास्ता एक्सरसाइज में थे और हम लोग ट्यूनिंग करते थे, कई बार हम पाकिस्तान बॉर्डर पे थे तो उनके गाने आ जाते थे उसमें।
0: अच्छा, उनके गाने उनके, हमारे भी जाते हैं सर,
1: हमारे भी जाते हैं
0: जी।
1: तो उसको लगा देते थे, शेव करते करते गाने सुन लेते थे
0: जी,
1: वो जमाना था। सो रेडियो हैज हैड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एक्चुअली।
0: ऑलराइट, तो कोई गीत अभी आप अगर बोलें कौन सा गीत प्ले करें?
1: हाँ, एक तेरी मिट्टी, दिस इज रिक्वेस्ट फ्रॉम नीति बल्ला।
0: ओके, आप ही के बॉन्डेड जो ग्रुप है उन्हीं की सदस्य
1: हैं, फ्रेंड्स हैं, में से बॉन्डेड तो नहीं है, बॉन्डेड तो एनडीए वाला ग्रुप है, ये लेडी।
0: ऑलराइट, तो नीति जी आपकी फरमाइश पूरी हो रही है आकाशवाणी में।

0: संदेश टू सोल्जर्स में आज हमारे साथ मेजर एस के यादव हैं और T-72 टैंक के इंस्ट्रक्टर रह चुके हैं, टैंक रेजिमेंट के साथ रह चुके हैं. आपके पूरे इस करियर में विद द यूनिफॉर्म ऑन कोई ऐसा इंसिडेंट जो आप शेयर करना चाहें हमारे सिविलियंस के साथ जो बड़ा यादगार है, एक्शन के दौरान या कुछ एडवेंचर?
1: पर्सनली मैं डिसिप्लिन के बारे में बता देता हूँ आपको. जब मैं यंग ऑफिसर मैंने ज्वाइन किया था तो मैं स्पोर्ट्स ऑफिसर था रेजिमेंट का.
0: और मेरे शो में स्पोर्ट्स आ ही जाता है, लोग कहते हैं आप जानबूझ के लाते हो, बट इट्स वंडरफुल टू हियर. प्लीज गो.
1: एक एडजुटेंट होता है हमारे, टोनी बेन्स, ही इज इन द यूएस नाउ, आई डोंट नो इफ ही इज लिसनिंग दिस, बट मैं नया नया था, मेरी 2 महीने की सर्विस थी.
0: ओके.
1: तो उन्होंने बोला शो मी द फुटबॉल शूज, डिस्प्ले करो कैसे हैं. तो मैंने शूज़ निकाले, डिस्प्ले कराए सारे रेजिमेंट के. तो एक शू में लेसेस नहीं थे, तो उसने उसकी वजह से मुझे गार्ड ड्यूटी, एक राउंड द क्लॉक गार्ड ड्यूटी की पनिशमेंट दी थी. उसमें क्या होता है कि यंग ऑफिसर को हर 1 घंटे बाद गार्ड रूम, एक जो हमारा होता है जहाँ पे हमारा एमिनेशन रखा होता है, वहाँ जाके साइन करना पड़ता है एवरी 1 आवर स्टार्टिंग फ्रॉम नाइट 9 PM टू मॉर्निंग 6 AM, सो दैट यू डोंट स्लीप.
0: अच्छा.
1: सो दैट इज अ पनिशमेंट फॉर द यंग ऑफिसर इफ यू मेक ए मिस्टेक.
0: ओके.
1: सो माय मिस्टेक वाज दैट आई डिड नॉट इंश्योर दैट देयर वर लेसेस इन द फुटबॉल शूज
0: एवर.
1: सो दैट आई यूज्ड टू ऑलवेज रिमेंबर.
0: एंड बट इट ग्रूम्ड यू इनटू अ गुड इंडिविजुअल.
1: यस यस एग्जैक्टली. एनडीए में आल्सो आपको मैं एक चीज बताऊंगा कि अगर आपके पास टेबल मैनर्स नहीं है, दे टीच यू अदर देन दे टीच यू थिंग्स लाइक टेबल मैनर्स, कर्टसी, ओपनिंग द डोर फॉर द लेडी. टेबल के ऊपर आप एल्बो रख के नहीं खा सकते. अगर आपके सीनियर ने आपको देख लिया तो वो आपका पूरा नमक आपके अंडे में डाल देगा,
0: वो बोलेगा खाओ,
1: पूरा आप खाओ, या पूरा का पूरा आपको बोलेगा टेबल के नीचे जाओ, और वो सारे वहां से जो गलती कर देते थे नीचे से उसको बम्प पिक किक करते थे. तो ये चीजें आपको याद रहती है लाइफ पर, यू नो कि.
0: बट आपको प्रॉब्लम नहीं होती ये सब डिसिप्लिन लेके जब आप सिविलियन सोसाइटी में आप जाते हैं?
1: काफी फौजियों को होती है, बट एडजस्ट करना पड़ता है, बट इट टेक्स टाइम टू एडजस्ट. इट टेक्स टाइम टू एडजस्ट.
0: तो गुस्सा कैसे चबाते हैं फिर आप?
1: अंदर अंदर हम बोलते हैं दीज ब्लडी सिविलियंस. जोकिंग करते हैं, दिस इज ऑल जोक्स, बट यू नो अगर कोई मैनर्स वूनर्स का अगर हमारे जैसे होता है तो हम अपने मन में ही करते हैं.
0: आप जब आपने अपनी सर्विस पूरी कर ली उसके बाद एडवेंचर में आप चले गए? बिल्कुल. नेचर से बहुत प्यार करते हैं.
1: चला गया था
0: जी.
1: एंड माय कंपनी वाज द फर्स्ट वन टू ब्रिंग बंजी जंपिंग इनटू इंडिया. वी वर द सेकंड कंपनी टू ब्रिंग हॉट एयर बलूनिंग इनटू इंडिया.
0: ओह.
1: एंड वी टू सेट अप

0: adventure sports, adventure treks, mountaineering and stuff like that, which we still do. The company, I don't know whether I can take the name of the company, Wanderlust, and it's a well-known company now.
1: तो आप एडवेंचर में मतलब आपका शुरू से ही शौक था?
0: हाँ, ऑलवेज, राइट फ्रॉम द आर्मी डेज.
1: जब तक पैशन नहीं होगा तब तक आप नहीं कर सकते ना काम.
0: आर्मी डेज से. एंड इवन नाउ टुडे वी आई एम अ ट्रैकर, आई ट्रैक अ लॉट. वी आर गोइंग फॉर अ हरकीडून ट्रैक नेक्स्ट मंथ नाउ, एंड वी डिड द ग्रेट लेक्स ट्रैक.
1: और कोई सिविलियन आपके साथ जुड़ना चाहे जो डिसिप्लिन्ड है वो जुड़ सकता
0: है? नहीं नहीं, सिविलियंस आर आल्सो डिसिप्लिन्ड, दे हैव गुड लॉट, एंड आई हैव लॉट ऑफ सिविलियन फ्रेंड्स, एंड वी ऑल गो टुगेदर इन माय ट्रेकिंग ग्रुप या अदर ग्रुप्स.
1: कुछ अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में आप कुछ शेयर करना चाहते हैं? ये बताइए कि आज के टाइम पे जो युवाओं को आप देखते हैं, है ना, लेट्स गेट टू दिस पॉइंट स्ट्रेट, जब आप इनको देखते हैं तो आप 15 साल की उम्र में एनडीए गए, आप एक डिसिप्लिन्ड बॉय बन गए या बना दिए गए, उसके बाद एक डिसिप्लिन्ड लाइफ आपकी चली आगे. आपको लगता है कि अब जो मॉडर्न सोसाइटी के जो युवा हैं जो आपको सुन रहे हैं, कुछ शायद चाहेंगे कि फौज में आए, कुछ नहीं आ पा रहे होंगे, तो फौजी जैसी जिंदगी वो डिसिप्लिन्ड लाइफ कैसे जिए?
0: देखिए, मेरा कहना है एंड इट्स ए पर्सनल ओपिनियन दैट एवरीबडी शुड स्पेंड सम टाइम इफ दे कैन इन द आर्मी फॉर इवन इफ इट इज फॉर 5 years लाइक द शॉर्ट सर्विस कमीशन. ये जो बेस बनता है ना जो शुरू का, एंड वो जो डिसिप्लिन्ड जो बेस होता है वो अर्ली डेज में ही हो सकता है. आप वो बेस 40 साल की उम्र में 50 साल की उम्र में नहीं बना सकते.
1: ग्रेट पॉइंट.
0: यू हैव टू कैट देम यंग. एंड ये अगर हम बेस दे दें अपने यूथ को कि आपको पता नहीं कर सकते हैं कि नहीं कि कंपलसरी आपको 5 years या 3 years की आर्मी ट्रेनिंग करनी है, देर विल बी ए होल लॉट ऑफ चेंज इन द सोसाइटी इन टर्म्स ऑफ एटलीस्ट डिसिप्लिन.
1: यस,
0: टेल्स ऑफ पंचुअलिटी, डिसिप्लिन, सो थिंग्स लाइक दैट विच द आर्मी टीचेस यू, एंड आई होप समडे दिस हैपेंस.
1: राइट. आपको प्यार व्यार नहीं हुआ कभी? सर आप बहुत सीरियस सीरियस बातें करो. टैंक की बात कर दी मैंने, फायर कर दिया हेलीकॉप्टर से, जनरल उतरे, उन्होंने बोला टैंक को इधर करो कुछ.
0: आप जब यंग ऑफिसर होते थे नाभा में, एक छोटा सा स्टेशन है पंजाब में.
1: अच्छा.
0: मुझे मालूम है कि हमारे कमांडिंग ऑफिसर, नाम नहीं लूंगा, कोई भी सीओ की डॉटर्स होती थी, उनको इम्प्रेस करने के लिए हम लोग टेनिस बैडमिंटन खेलते थे,
1: जोर जोर से शॉटें मारते थे,
0: कभी कभी कुछ लेटर्स एक्सचेंज होते थे तो टेनिस कोर्ट के पास कहीं एक लेटर चला जाता था, वहां से दूसरे दिन लेटर आता था, तो बस वही होता था.
1: बस
0: दैट इज द टाइप ऑफ रोमांस वी डिड इन दोस डेज.
1: अच्छा, एक रोमांटिक गाना चला देता हूँ सर. आप ही की प्लेलिस्ट से लिया हुआ है कुछ, इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? किसकी फरमाइश है ये बताते हैं सर. ये गाना सुनते हैं और उसके बाद वापस आते हैं जल्दी.

0: संदेश टू सोल्जर सुन रहे हैं। मेरा नाम है मुनीश जौली और हमारे साथ मेजर एस के यादव मौजूद हैं। तो यादव साहब, अच्छा कि आपने थोड़ा बहुत बता दिया कि रोमांस है आपके दिल में और चिट्ठियां आप लिखते थे, तो फौजी की चिट्ठी भी वही होती है कि बम धड़ाके वाली या कुछ रोमांटिक बातें होती हैं उसमें?
1: फौजी भी आप जैसे ही हैं, हम और आप

0: और हम में भी वही फीलिंग्स है जो आप में है और वही जज्बा है, तो एब्सोल्युटली देयर इज नो डिफरेंस.
1: दिल्ली में अभी ये मौसम चल रहा है कि बोगनविलिया बहुत देखने को मिलता है, और उससे जुड़ी कोई खास बात आपसे जुड़ी हुई है?
0: बोगनविला मेरा एक पैशन था. एक माउंटेन्स भीमताल के पास एक मैंने फ्रूट ऑर्चर्ड बनाया है
1: ओ वंडरफुल.
0: और उसमें करीब 500 फ्रूट ट्रीज लगाए हैं
1: ओ
0: एंड आई कॉल इट बोगनविला माउंटेन रिट्रीट. और 5 कॉटेजेस बनाई हैं. जो द गुड थिंग अबाउट दैट इज़ कि उसमें कोई आरसीसी फुटप्रिंट नहीं है, खाली पाइन वुड ग्लास और लोकल स्टोन का है.
1: अच्छा
0: और उसमें खाली नेचर है,
1: हाँ
0: फ्रूट्स हैं, फ्लावर्स हैं, पहाड़ है. दैट इज इट.
1: आप
0: एंड आई
1: बोल
0: लव
1: रहे हैं ऐसा
0: दैट.
1: लग रहा है वहीं पहुंच गए.
0: मैं वहीं पहुंच जाता हूँ ऑलमोस्ट एवरी वीकेंड.
1: वहीं पहुंच जाता हूँ. आप डॉग लवर भी हैं सर,
0: यस.
1: आपने बातों बातों में हमें बताया, और मैं भी डॉग लवर हूँ. एंड अभी लगभग 2 दिन पहले दिल्ली कैंट एरिया में जो कैंट बोर्ड है उसके जरिए एक वेट हॉस्पिटल भी खोला गया है, और न्यू दिल्ली की कॉन्स्टिट्यूएंसी की जो माननीय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उन्होंने उसका उद्घाटन किया, सुन के अच्छा लगा. तो ये
0: मेरे पास, मुझे याद नहीं है मेरी इंटायर लाइफ में एक्चुअली
1: जी
0: कि मेरी फैमिली में एक डॉग ना हो
1: अच्छा
0: एवर.
1: ओके
0: माय फादर वाज अ डॉग लवर एंड आई हैव हैड लैब्राडोर्स. अब मेरे पास एक गोल्डन रिट्रीवर है, शिफू है उसका नाम. और अभी एक मेरे दोस्त ने मुझे एक पहाड़ी शीप डॉग जो उसको रोड साइड पर मिला था उसको उसने रेस्क्यू किया.
1: रेस्क्यू किया. ओके
0: एंड थैंक यू विवेक अगर आप सुन रहे हैं. और उन्होंने मुझे ये ऑफर दिया कि अगर आप इसको रखना चाहें तो हम
1: विवेक
0: बगीरा
1: हीरो
0: उसका
1: है
0: नाम
1: सर.
0: रखा है और उसको हमने अभी 5-6 महीने का है एंड इज ए शीप डॉग. और बहुत मजा आता
1: मेरे
0: है.
1: पास फोन आते हैं, आईपीएल के मैचेस आ रहे हैं, पासेस मिलेंगे, पासेस मिलेंगे. विवेक ने अगर डॉग की जान बचाई तो एक पास उसको दूंगा आईपीएल का. मैं नहीं सर, मैं देखे रहूंगा.
0: ओ वैसे विवेक यू अर्न्ड अ पास आईपीएल पास इफ यू आर लिसनिंग.
1: टॉप टीयर
0: विवेक
1: होगा पर
0: लैंडोर में रहते हैं मसूरी के पास.
1: फिर तो बच गए. एनीवे सर, यू जस्ट मेंशन अबाउट योर डैड. आई थिंक हमारे प्रोग्राम पूरा नहीं हो सकता कि आपके एक तरीके से आइडल, आपके इंस्पिरेशन, आपके फादर फॉर्मर एयरफोर्स पायलट, हंटर जहाज उड़ाते थे और उसके बाद ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट उड़ा रहे थे, जो फाइटर पायलट, यू नो, बिलोंग्स टू माय कम्युनिटी. टेल अस समथिंग अबाउट हिम सर.
0: माय डैड केम फ्रॉम अ स्मॉल विलेज इन हरियाणा
1: जी
0: एंड ही ग्रेजुएटेड फ्रॉम सेंट स्टीफन्स कॉलेज
1: वाओ
0: एंड देन जॉइंड द एयरफोर्स.
1: हरियाणा में कहाँ से सर?
0: एक गांव है रेवाड़ी के पास कॉल्ड दखोरा. इट्स नियर कोसली. अगर आपने सुना रेवाड़ी, रेवाड़ी तो सुना.
1: वहां
0: है
1: से और भी फाइटर पायलट्स आए.
0: कोसली इज ए विलेज बाय द वे इन हरियाणा जहाँ पे सारे ऑफिसर्स यहाँ देयर इज ए ऑफिसर्स मेस इन दैट विलेज.
1: वाह.
0: तो
1: स्क्वाड्रन लीडर मनीष यादव
0: काफी हैं
1: जी,
0: एयरफोर्स के भी हैं.
1: ओके
0: सो दैट इज हाउ ही दैट इज हिज रूट्स एंड देन ही ग्रू अप इन
1: एंड वाज ही पार्ट ऑफ द वॉर. Hunter उड़ाते थे.
0: Yes, yes, he was seen the 71 war, he seen the 65 war. Yes.
1: Okay. और क्या खास बात आपके फादर में आपको लगती थी जो आप उनको, हमारे डैड हीरोज तो होते हैं लेकिन सबके डैड के अंदर एक खास क्वालिटी होती है, तो आपको क्या लगता था उनके अंदर?
0: सुबह सुबह जब वो यूनिफॉर्म पहनते थे मैं
1: जी.
0: देखता था छोटा बच्चा और मैंने कहा यार मैं कब बड़ा हूँगा और ये यूनिफॉर्म पहनूंगा. और ऊपर हवाई जहाज उड़ते थे, देखते थे हम लोग. एंड मेरे फादर भी टॉल थे, नाइस एंड फॉलोड हिज फुटस्टेप्स.
1: पर आपने भी फ्लाइंग सीखी है.
0: हाँ.
1: एंड यू आर अ क्वालिफाइड पायलट.
0: यस, आई हैव गॉट अ सीपीएल.
1: ऑलराइट. तो हाउ कम एयरफोर्स को छोड़कर, नॉट दैट टैंक में नहीं जाना चाहिए था लेकिन लड़ाकू टैंक, लड़ाकू विमान.
0: आई लेफ्ट द आर्मी, आई वेंट अवे टू यूके.
1: ओके.
0: एंड कैंट से मैंने अपना फ्लाइंग लाइसेंस लिया था.
1: वाओ. राइट सर, समय इजाजत नहीं दे रहा कि हम आगे और बढ़े. आपके जो बॉन्डेड ग्रुप है वहां से कोई और फरमाइश तो नहीं आई सर गाने की? अगर आई है तो हम जाने से पहले उसे प्ले करेंगे सर.
0: काफी है लेकिन आप अगर एक ये कर दो अभी ना जाओ छोड़ करके.
1: हाँ हाँ, दिल अभी भरा नहीं. सर ये तो हमें कहना चाहिए आपके लिए कि अभी ना जाओ छोड़कर. मोहम्मद रफी
0: Yes.
1: साहब की आवाज में एक गीत है तो इसको मैं चलाता हूँ ढूंढ के सर.

0: राइट देन सर, इट वॉज अ शेयर प्लेजर आपसे मिलकर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा. एंड ये गीत तो मैं चला रहा हूँ, बट वी मीन इट एवरी लिरिक ऑफ दिस गोल्डन सॉन्ग. कुछ चलते चलते हमारे युवाओं को कुछ मैसेज देना चाहेंगे?
1: थैंक यू सो मच गाइज. प्ले लॉट ऑफ स्पोर्ट्स, प्ले लॉट ऑफ वेदर इज टेनिस, स्विमिंग, आउटडोर्स, एंड सी लेस ऑफ स्क्रीन टाइम.
0: वो बहुत जरूरी है सर. But it was a sheer pleasure hosting you, sir. And please look after yourself. And thank you so much.
1: Thank you.

0: शांति निकेतन बारे अगर मैं तुहानूं कुछ दसां तां शांति निकेतन एक पछमी बंगाल दा एक बोलपुर शहर विच स्थित एक प्रसिद्ध सिक्ख्या अते सभ्याचार केंद्र है जो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने स्थापित किया सी। जित शांति निकेतन दा अर्थ ही आही है कि शांति दा निवास, जिथे तुसी तुहानूं शांति मिले आके, जिथे तुसी बहुत कुछ सीख सकते हो या तुहानूं रेगुलर लाइफ दे विच जो चीज़ां तुसी नहीं कर पा रहे तां तुसी उत्थे आके कर सकते हो। शांति दा निवास उन्होंने तां ही रख्या शांति निकेतन, जो अज दे टाइम च विश्वा भारती यूनिवर्सिटी के नाम नाल जाने जाता है। उत्थे इन्होंने सिक्ख्या दे नाल जुड़े हुई कला, संगीत या मनुखा दे मुल्लां लई विश्व भर विच एक मशहूर एक सेंटर बनाया सी, जिथे आके लोग सीखते सी।
1: बिल्कुल, तां होर भी बहुत सारी फिल्म्स उन्हां ते बनियां ने
0: जी।
1: तो जो जलियांवाला बाग साका होया तां टैगोर दे जिहड़े दिल सी उन्हां दा कुरला उठिया सी, तां जिहड़ा खिताब उन्हां ने अंग्रेज़ां नूं अंग्रेज़ां वल्लों उन्हां नूं मिलिया सी नाइटहुड दा, उन्होंने वापस कर दिता सी कह के कि मेरे देशवासियों के दर्द के जेड़े तगमे ने मिट्टी के समान ने
0: जी। मैनू एवं लगता है कि ऐसी जो पर्सनैलिटीज़ हैं, ऐसी पर्सनैलिटीज़ इन इंडिया कह लो या पूरे वर्ल्ड के भी कह लो, बहुत सारी ऐसी पर्सनैलिटीज़ हो गया, पर जो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अपनी पूरी लाइफ एक इंडिया नू दित्ती, तो फिर वह किसी भी सैक्टर कह लो, एजुकेशन कह लो या फिर आप नेचर के थ्रू कह लिए उन्हें जुड़िया सिक्ख्यावान हो जाए, या फिर उन्होंने जो एक शांति निकेतन की स्थापना की जिथे काफ़ी लोग अज भी जाके अपनी स्टडीज़ कर रहे हैं, कंप्लीशन कर रहे हैं, तो मैं एवं लगता कि ऐसी पर्सनैलिटीज़ का आना बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो होना भी बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, तो एक लाइन सानू सारे नू पता है जिहड़ी उन्होंने बोली सी, जिथे मन निडर होवे ते सिर उच्चा होवे। मैनू आस है कि इन्हां दीआं इह लाइनां साडे लई हमेशा मार्गदर्शन बनिया रहणगियां, ते असी जो उन्होंने सोचिया सी, जो उन्होंने साडे लई कीता सी, हमेशा उन्हां दी जिहड़ी आसां ते उतरीए
0: जी। मैनू एवें लगता कि जदों आपां कहिंदे ना कि उन्हां दे वी बहुत फेमस एक सेइंग है कि उन्होंने कहा कि फेथ इज़ द बर्ड दैट फील्स द लाइट वैन द डॉन इज स्टिल डार्क। मतलब जे मन विच विश्वास होवे तां हनेरे विच वी उसदी रोशनी दिखाई दिंदी है। इस करके मैनूं लगता है कि जदों वी लाइफ विच कदे लगे ना कि आपां डाउन फील कर रहे हैं कुछ है, तां हमेशा एक पॉजिटिव होके आपां नूं काम करना चाहिए, तो हमेशा अपने आप ते विश्वास जरूर रखना चाहिए, क्योंकि अज नहीं तो कल जो तुसी जिस चीज़ ते काम कर रहे हो या किसी चीज़ की मेहनत कर रहे हो वह कल नूं फ्रूटफुल जरूर होएगी, उहदा रिजल्ट अच्छा ही आएगा।
1: बिल्कुल, तो आओ अज के दिन असं सारे प्रोमिस करते हैं कि नफरत दियां कंधां तोड़िए, तो मुहब्बत के गीत असं सारे एक दूसरे के नाल रल के गाइए।

0: शंकर साहबा मिर्जे दे बकी हवा नु चीर दे होया पलंच तेरे वीर तो को दूर निकल जाएगी।
1: जस्ट चिल मिर्जिया, मेरे वीर तो हले करो ही नहीं निकले, उते कार बैठे एफएम रेनबो सुन रहे ने, ते सुन दे ही रहेंगे।
2: एफएम रेनबो बाकी सब कुछ भुला देवे।

0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
1: जिंदगी परीक्षा के लिए नहीं है, हमारे जीवन को बनाने के लिए शिक्षा एक माध्यम है।
0: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके

0: लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
1: एक विशेष सूचना, आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज़ ते

0: लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
1: एक विशेष सूचना, आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181 prasarbharati.gov.in।

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
1: परीक्षा एक ऐसा अवसर है और परीक्षा के लिए हेल्दी कंपटीशन की भावना हमारी तैयारी को और बेहतरीन बनाती है।
0: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
2: एक जरूरी सूचना, आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक NRT कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सेहत बायोडाटा, रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नथी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता ए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोण प्रक्रिया बारे वेरवे सहज जानकारी अते खाली फार्म साडी वेबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे, ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।

0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
1: अगर टाइम मैनेजमेंट सीख ली और समय का प्रोडक्टिव यूज सीख लिया तो आप देखिए, आप कभी भी प्रेशर नहीं लगेगा, थकान नहीं लगेगी।
0: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
1: अल्टीमेट गोल एग्जाम के नंबर नहीं हो सकता है, अल्टीमेट गोल संपूर्ण जीवन के विकास का होना चाहिए।
0: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।

नमस्कार, पेश में एफएम न्यूज हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन संदूर दी पहले वरेगंढ ते हथियारबंद बलां दी बहादुरी नूं नमन करदिआं दहशतगर्दी ते इस दी हमायत करन वाले तंत्र नूं खत्म करन लई राष्ट्र दी वचनबद्धता नूं दोहराया। ईडी वल्लों ग्रेटर मोहाली एरिया डिवेलपमेंट अथॉरिटी तों जमीन दी वरतों च तब्दीली बारे लाइसेंस धोखाधड़ी दे संबंध च पंजाब दे मोहाली ते चंडीगढ़ च 12 थावां ते छापेमारी कीती गई। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान अज 4 दिनां दी शुकराना यात्रा दे हिस्से वजों श्री हरिमंदर साहिब विखे नतमस्तक होए। भाजपा पंजाब दे एक वफद ने डीजीपी गौरव यादव नाल मुलाकात की थी ते झूठे भड़काऊ ते बेबुनियादी बयान देण दे दोष हेठ मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान विरुद्ध एफआईआर दर्ज करन लई एक शिकायत सौंपी। पंजाब खेतीबाड़ी विभाग वल्लों फरीदकोट च गैर कानूनी खाद ते कीटनाशक पैकेजिंग यूनिट दा पर्दाफाश। पंजाब कैबिनेट मंत्री बलजीत कौर ने कहा कि सूबा सरकार वल्लों पिछले 4 च पट्टी दर्ज जाता नाल संबंधित पहली तो 10वीं जमात च पढ़ रहे विद्यार्थियों लई मुफ्त पाठ पुस्तकां दी सप्लाई स्कीम अधीन 204.69 करोड़ रुपए की अदायगी पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड नूं कीती गई है। आबकारी विभाग के जिला गुरदासपुर पुलिस वालों ब्यास कंडे दे मंड खेतर च तलाशी मुहिम दौरान हजारां लीटर कच्ची लाण बरामद करके नष्ट कीती गई। पंजाब दे कैबिनेट मंत्री श्री वरिंदर कुमार गोयल ने राजस्थान फीडर नहर दी रीलाइनिंग दे चल रहे काम दा जायजा लिया ते अधिकारियों नूं काम निर्धारित समय च मुकम्मल करन दे निर्देश दिते। तीरअंदाजी च भारत दीआं औरतां दी रिकवर टीम ने अज चीन दे शंघाई च सैमीफाइनल च रिकॉर्ड 10 वार दी ओलंपिक चैंपियन दक्षिणी कोरिया दी टीम ते शानदार जित नाल विश्व कप पड़ा 2 च देश दा पहला तगमा पक्का कर लिया। एसएन एफएम न्यूज़ हेडलाइंस। हुण तों कुछ कु पलां बाद तुसीं साडा प्रोग्राम इंजॉय करोगे फिल्मी दुनिया।

हेलो हाय नमस्कार की हाल चाल मैं हरीश हाजर है जी और तुहाडे नाल मौज मस्ती करन दे लई इस समय नू होर भी खुशनुमा बनाउन दे लई हाजर हो गया मैं और अज दा सफर उम्मीद करदा कि तुहानू बहुत पसंद आएगा और साडा इस सफर ठीक 11 बजे तक इसे तरह बनिया रहेगा और साडे अलग अलग पड़ा अलग अलग प्रोग्राम जेडे ने वो मैं लैके हाजिर हाँ और तुहाडे नाल जदों भी मिलदा ना आहा रूह तां खुश हुंदी हुंदी है मन चित एवरीथिंग पूरी तरह दे नाल जाम हो जांदा एनर्जेटिक फील करदे और उम्मीद है कि तुसीं भी पूरी तरह दे नाल एनर्जेटिक हो जाओगे क्योंकि टेंशन वाला दौर

0: करार हो गोरी हो गोरी हो गोरी बढ़ के बुदन चीर भी टक्कर क्या मैं करूं गोरी मुझे तुझसे है प्यार जो न तुझे देखूं न आए करार
1: हटो जाओ ना बनाओ हटो जाओ हाय हाय ना बनाओ हाय हाय।

0: तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़ हो गोरी, ओ नटखट ओ खटपट ओ पनघट ओ झटपट। पहले तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़।
1: अरे नैना ओ मीठे बहना, अरे नैना हाय हाय मीठे बहना।

पेश ने एफएम न्यूज हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दहशतगर्दी ते इस नू हमायत देण वाले तंत्र नू तबाह करन लई राष्ट्र दी वचनबद्धता नू दोहराया है।

फिक्का, बिल्कुल फिक्का। खैर प्रोग्राम चल रहा है जी, दिल चाहता है हरीश नाल है तुहाडे, और इस वेले तुहाडे मैसेजेस पढ़े जा रहे हैं। 9855 10 10 27 साडा व्हाट्सएप नंबर है, और इस व्हाट्सएप नंबर से तुसी मैसेजेस भेज सकते हो, व्हाट्सएप मैसेज, और अपनी फरमाइशा जो इस वेले पूरी हो रही ने। एक होर मैसेज पढ़ते हैं। कार्यक्रम दिल चाहता है पेशकर्ता आदरणीय प्रसारक महोदय हरीश जी को हमारा प्यार भरा नमस्कार, हार्दिक अभिनंदन, सत श्री अकाल, बहुत सारा प्यार मोहब्बतें, आपके क्या हाल हैं जी? मैं बिल्कुल ठीक हाँ जी, आपकी पेशकश लाजवाब होंदी है जी, सानू बहुत सोहना लगता है जी, थैंक यू सो मच, तुसी प्यार दे रही हो जी। ना फिल्म चरित्रहीन आवाज़ किशोर कुमार, लता मंगेशकर जी, गीत के बोल, दिल से दिल मिलने का कोई कारण होगा? बिल्कुल होएगा जी, एवं थोड़ी मिलते हैं। रघुनाथपुरा जिला श्री गंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित, खुशी गोस्वामी, ये मैसेज साढ़े तक पहुँचे, थैंक यू सो मच मैसेज पहुँचाने के लिए। तो फिर दिल न दिल मिलाने आप, कारण जानने क्यों मिले ने।

भानु प्रकाश। ये फिल्म दो बंदा गाना सुनना चाहते ने तो इन्हों जरूर सुनाने जी आप, और फटाफट फरमायश पूरी करते हैं इन्हों की, और ठंडी हवा वाला गाना सुनना चाहते ने, लगता इन्हों पासे गर्मी पै रही बहुत ज़्यादा।

107 FM रेनबो ते हरीश हाजर है और आगाज हो चुका है शामे गजल दा। जिवें जिवें इरादा होर ज़्यादा गहराउंदी जाएगी उवें उवें इस प्रोग्राम दा होर भी लुत्फ, होर भी मज़ा, होर भी खूबसूरती वधदी जाएगी और इस रात नूं होर भी खूबसूरत बनाउणगियां गजलां। वो गजलां जो खुद भी खूबसूरत हुंदियां ने और इस प्यार नूं होर भी ज़्यादा गहराउंदियां ने, निग दिंदियां ने और ये निग जड़ा है बड़ा ही प्यारा हुंदा और इहदी खुशबू बड़ी निराली हुंदी।

काश और खैर, एक काश था कि तुम हो जाओ मेरे, एक खैर है कि अब नहीं हो सकते। खैर, अब जो हालात हैं वो हैं, काश कि वो सही हो सकते। खैर, अब तुम कहीं और मैं कहीं, काश जहां सोचा था वहीं हो सकते। खैर, अब तुम्हें ढूंढूंगा मैं अल्फाजों में, काश की यादों की तरह तुम हर कहीं हो सकते। खैर, अब जो खैर है सो है नादान, अब हर काश तो पूरे नहीं हो सकते।

लेकिन हाँ, काश पूरे नहीं हो सकते, लेकिन काश नहीं हो सकते पूरे, पर तुम्हारी याद जो हर वक्त आती है, हर रात आती है, वो मुकम्मल है, वो पूरी है, वो कभी आधी नहीं आती, कभी नहीं।

और फिर वो सभी लोग शायर बने। वो सभी लोग जिन्होंने खोया किसी ऐसे को जिसके बाद वो खुद को खो बैठे, जो हारे हर उस जगह जहां उनका जीतना जरूरी था, जिनको हंसना पड़ा हर उन परिस्थितियों में।

बने वो सभी लोग जिन्होंने खोया किसी ऐसे को जिसके बाद वो खुद को खो बैठे, जो हारे हर उस जगह जहां उनका जीतना जरूरी था, जिनको हंसना पड़ा हर उन परिस्थितियों में जब उनका रोना जरूरी था, वो जो हालातों को संभालते संभालते खुद को संभालना भूल गए, और फिर वो सभी लोग शायर हुए, वो सभी लोग शायर बने।

जीवन के तमाम मसलों को किनारे कर एक बार निश्चल व निस्वार्थ प्रेम किए जाने की कामना कितनी बड़ी और कितनी छोटी होतीगी, ये कामना कितनी छोटी होती होगी। नहीं, किसी से प्रेम करने योग्य हृदय, किसी का प्रेम बनने योग्य भाग, कितनी कितनी कठिन और कितनी आसान होती होगी ये दोनों चीजें। छूने देना अपनी सबसे नाजुक चोट को और भर पाना किसी के सबसे गहरे घाव को, कितना भावुक और कितनी सुखद होती होगी ये अनुभूति। महज सुनना किसी से कि दिन कैसा गया और फिर कहना उससे दिन भर की बात, कितनी लंबी और कितनी छोटी होती होगी ये बातें। नहीं, ये प्यार की बातें कभी की हैं आपने? प्यार तो किया होगा।

मैं तुझको देखकर अपनी पसंद पे नाज करता हूं। हां, मैं इजहार करता हूं कि मैं तुझसे प्यार करता हूं। तू चाहत है मेरे जैसे बहुत आशिक दीवानों की, तो बस चाहे मुझे, मैं रब से ये फरियाद करता हूं, मैं सिर्फ तुझसे प्यार करता हूं। हां हां, मैं इजहार करता हूं कि मैं सिर्फ और सिर्फ तुझी से प्यार करता हूं। शामे गजल दिए अखीरली गजल, तो हड्डी पेश खिदमत है।

एक प्यार का नगमा है, प्यार और करार। कभी कभी प्यार हो किसी से तो ज़रूरी नहीं कि करार हो, और करार प्यार में कम ही आता है। और जब कभी किसी से प्यार हो जाता है तो फिर ये लाजमी हो जाता है कि गम भी उसके आसपास मंडराता रहता है। और कभी कभी वो जो गम है उस पे भी प्यार आता है, और कभी गम ना हो तो फिर खुद पे गुस्सा आता है। होता है ऐसे, अगर उसकी याद ना हो तो क्या हो, कभी सोचा है?

जब कभी किसी से लगाव होता है, प्यार होता है, तो मिलना बिछड़ना लगा रहता है। और जब तो मिलना होता है तो तब तो दिल बहुत खुश होता है, और जब नहीं तो बेताब होता है। और जब कभी मिलकर लड़ना होता है, शरारतें होती हैं, तो मन खुश हो जाता है और दिल कहता है कि ये हमेशा ताउम्र ऐसे ही चलता रहे, और काश हम ऐसे ही एक दूसरे के लिए हमेशा हमेशा के लिए हो जाएं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं होता कि ये लगाव, ये प्यार, ये लड़ना झगड़ना, शरारतें साथ रहें हमेशा, है ना।